0: और इंसाफ के साथ ठीक तोलो और तोल कम मत करो।
1: والأرض وضعها للأنام
0: और उसी ने खलकत के लिए जमीन बिछाई।

आसमान और जमीन में जितने लोग हैं सब उसी से मांगते हैं, वो हर रोज किसी न किसी काम में होता है।

तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुठलाओगे? उन दोनों में बहुत सी शाखें यानी किस्म किस्म के मेवों के दरख्त हैं।

0: तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे?
1: मुदहम्मतान,
0: दोनों खूब गहरे सब्ज़।

तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुठलाओगे? इनमें नेक सीरत खूबसूरत औरतें हैं।

0: आवाज की दुनिया का दोस्त, मालूमातों तफरीह का साथी, मेरा आपका हम सबका FM 101 रेडियो पाकिस्तान कौम की आवाज।
1: Back to back, hit music on your favorite musical channel, Radio FM 101. Stay tuned.

0: We'll be right back after this short commercial break. Stay tuned.
1: मूसलाधार बारिश और शदीद झालावारी लोगों को जख्मी और इमारतों, गाड़ियों और खड़ी फसलों को नुकसान पहुंचा सकती है। तेज और मुसलसल बारिशों से पानी छतों, घरों की बुनियादों और जोड़ वगैरह में इकट्ठा होकर बाइसे तकलीफ और जानी और माली नुकसान का सबब बन सकता है। इससे बचाव के लिए ये चंद एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। दीवारों, छतों और बुनियादों में दरारों का मुकम्मल मुआयना करें। दीवारों और छतों में शगाफ की मरम्मत करें और इस बात को यकीनी बनाएं कि तमाम स्ट्रक्चर तेज बारिशों को बर्दाश्त करने के काबिल है। इमारतों की उखड़ती टाइलें या ईंटें उनको महफूज कर लें या हटा दें जो शदीद बारिशों के दौरान उखड़ सकती हैं और खतरा बन सकती हैं। इस बात को यकीनी बनाएं कि निकासी आपके निजाम में मलबा या कचरा ना हो ताकि पानी के जमा होने से बचा जा सके।
2: 101 FM
3: मौसम बरसात के लिए जरूरी एहतियाती तदाबीर। तेज आंधी और बारिश में बिजली के खंबे, साइन बोर्ड्स और दरख्तों से दूर रहें। रिहायशी इमारतों की छतों की सफाई, मरम्मत और नकासी आपको यकीनी बनाएं। बरसाती नालों और सीवरेज सिस्टम के अंदर कूड़ा करकट फेंकने से इज्तनाब करें। बोसीदा और कच्चे मकानात के रिहायशी शदीद बारिश की सूरत में महफूज मकामात पर मुंतकिल हो जाएं। बच्चे, बूढ़े, खवातीन और माजूर अफराद पर हंगामी सूरतेहाल में खुसूसी तवज्जो दें। ज़ेरे तामीर इमारात में दाखिल होने या रिहाइश इख्तियार करने से इज्तनाब करें। नशेबी इलाकों के मकीन अपने घरों के तहखाना जात और निचली मंजिलों का अहम और कीमती सामान महफूज और बुलंद मकामात पर मुंतकिल कर लें। जानवरों को हिफाजती टीका जात लगवाएं और उनके चारे को खुश्क मकामात पर रखें। दरियाओं और बरसाती नालों में नहाने और गुजरने से परहेज करें। रेडियो, टीवी, अखबारात, फोन, एसएमएस वगैरह के जरिए मौसम और सैलाबी सूरतेहाल से आगाह रहें। खड़े और बहते पानी में मौसमी और वबाई अमराज से बचाव के लिए खसूसी इकदामात करें। बिजली के आलात को पानी से दूर रखें और जमीन पर गिरी हुई तारों को छूने से इज्तनाब करें। हिफाजत सिर्फ एहतियात में।
4: Level with zero tuition fee, 100% future, Bhagat International College, Twin Cities top A-level institute, built on discipline, driven by academic excellence. Learn from the best faculty of Islamabad and Rawalpindi. Get merit stipends and financial support. Bhagat International College does not just teach, it builds leaders. Admissions open at Bhagat International College, Gulberg Greens, Islamabad. Call now 0330-511-0099.
5: You are listening FM 101 Radio Pakistan. FM 101. Tune in to the one above.
6: Yeah, you're like an explosion, explosion.
7: But you don't know who's getting outside. I lead the combination dancing up. All pretty girl them. What you do?

0: सुबह के 9 बजे हैं। अस्सलाम वालेकुम, ये रेडियो पाकिस्तान है। समरा यूसुफ से खबरें सुनिए। अहम खबरों का खुलासा। वज़ीर-ए-आज़म ने यकीन जाहिर किया है कि अक़वामे मुत्तहिदा के साथ पाकिस्तान की करीबी शराकत दारी को मुसलसल फरोग हासिल होगा। नायब वज़ीर-ए-आज़म और अक़वामे मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने टेलीफोन पर गुफ्तगू के दौरान बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादले ख्याल किया है। शाम के वजीर खारजा और मलाइशिया के वजीर दाखिला दो तरफा ताल्लुकात के तमाम शोबों पर बातचीत के लिए पाकिस्तान में हैं। हुकूमत ने हाई स्पीड डीजल की कीमत में 32.63 रुपए फी लीटर कमी की है। और अब खबरों की तफसील।
1: कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, कोयटा, हैदराबाद, फैसलाबाद, सियालकोट, मुल्तान, बहावलपुर, सरगोधा, लाड़काना, मिट्टी, बिच्छा, खैरपुर, कोहाट, बन्नू, एबटाबाद एंड मीरपुर आजाद कश्मीर। द बिगेस्ट FM रेडियो नेटवर्क ऑफ पाकिस्तान। ट्यून इन टू द वन अबव FM 101.101.
2: For latest news headlines, after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan. Radio Pakistan. This is FM 101.
3: I love FM 101.
4: Surur Sangeet, Sazo Awaaz, aapka manpasand radio channel. FM 101.

मिले दर्द बहुत, कभी तू भी मिल, दिल में रहती नहीं जानम तू ही दिल, आज फिर आई ना तू, इंतजार रहा मुस्तकिल, तवील है गम की शाम, कहानी मोहब्बत की मुख्तसर, नजर सानी करो।

रेडियो पाकिस्तान। सामने रेडियो पाकिस्तान और पाकिस्तान टेलीविजन ने रबी अव्वल के इस मुकद्दस मोहतरम और मुबारक मौके पर हस्ब मामूल कुल पाकिस्तान मुकाबला नात खानी का एहतमाम किया है। इस मुकाबला नात खानी में मुल्क के चारों सूबों गिलगित बल्तिस्तान, आजाद कश्मीर और वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में मुनाकिद होने वाले मुकाबले नात खानी में अव्वल पोजीशन हासिल करने वाले नात खां बच्चे और बच्चियां शिरकत कर रहे हैं। अब से कुछ ही देर में हम आपको पाकिस्तान नेशनल काउंसिल ऑफ द आर्ट्स ऑडिटोरियम लिए चलेंगे, जहां से आप ये कुल पाकिस्तान मुकाबला नात खानी बराहे रास्त सुन सकेंगे। रेडियो पाकिस्तान।

0: लास्ट 5 सेकंड जीतू सर जी सर
1: बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोज़ सामईन नाज़रीन मुकर्रम और हाज़रीन मोहतरम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। मारगला की खूबसूरत और सरसब्ज पहाड़ियों के साय में वाक़े पाकिस्तान नेशनल काउंसिल ऑफ द आर्ट्स इस्लामाबाद के इस खूबसूरत ऑडिटोरियम में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूँ आपका मेज़बान हामिद ज़हूर। सामईन, कैसी खुशबख्ती की बात है कि अल्लाह ताला हर साल हमें ये बाबरकत लम्हात मुयस्सर फरमाता है, और हर साल की तरह इस साल भी माह रबीउल अव्वल के इन मुकद्दस और बाबरकत लम्हात में कुल पाकिस्तान मुकाबला नात खानी की सालाना तकरीब का इनेकाद हम सब के लिए बाइस रहमत व बरकत है, जिसका अहतमाम रेडियो पाकिस्तान और पाकिस्तान टेलीविज़न कॉरपोरेशन के इश्तराक से बराह रास्त किया जा रहा है। सामईन और नाज़रीन मोहतरम, कुरान मजीद अल्लाह ताला की आखिरी किताब है, जिसे अल्लाह ताला ने अपने आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम पर नाजिल फरमाया। अल्लाह ताला की इसी पाक और बाबरकत मुकद्दस किताब के कलाम के बारे में प्यारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम का इरशाद ग्रामी है कि कुरान करीम की तिलावत और दरसो तदरीस करने वालों पर अल्लाह तबारक तआला सकीनत यानी दिल का सुकून और आराम नाजिल फरमाता है, रहमत उन्हें ढांप लेती है, फरिश्ते उन्हें घेर लेते हैं और अल्लाह उनका जिक्र अपने फरिश्तों में फरमाता है। आज की इस बाबरकत तकरीब का बाकायदा आगाज़ रब्बे जुलजलाल के बाबरकत नाम से करते हैं। कुरान करीम फुरकान हमीद की आयात मुकद्दसा की तिलावत की सआदत हासिल कर रहे हैं कारी मोहम्मद अय्यूब वज़ीर।
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

0: मिसले नजूम है सभी असहाब सामने
1: आए हैं जब वो गुंबदो मेरा सामने आए हैं जब वो गुंबदो मेरा सामने
0: इस जोर से धड़कना यहाँ पर रवा नहीं इस जोर से धड़कना

आपके देर साया है हर दूसरा, आप है वजह तखली के अर्जो समा, आपके देर साया है हर दूसरा, आप महबूब खल्ला के जिन्नो बशर, आप महबूब खल्ला के जिन्नो बशर, सैयदी मुर्शिदी या नबी, वही खालिक है हर एक बात आपकी, ऐब से है मुबर्रा हयात आपकी, वही खालिक।

0: आप है हामी ए बेकसम, वजह तस्कीन दिल आपकी एक नजर, वजह तस्कीन दिल आपकी एक नजर, सैयदी मुर्शिदी या नबी, जीनत महफिले दूसरा आप है, मजहरे नूरे रब्बुल आप है, जीनत महफिले दूसरा आप है, मजहरे नूरे रब्बुल आप है, आपके दम से रोशन है शम्सो कमर, आपके दम से रोशन है शम्सो कमर, सैयदी मुर्शिदी या नबी।
1: रेडियो पाकिस्तान सामीन, सालाना कुल पाकिस्तान मुकाबले नात खानी हम आप तक बराह रास्त पहुंचा रहे हैं। इसका इनेकाद रेडियो पाकिस्तान और पाकिस्तान टेलीविजन ने मजमूई तौर पर, इज्तमाही तौर पर किया है। इस मुकाबले नात खानी में मुल्क के चारों सूबों गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर और वफाकी दारुलहुकूमत इस्लामाबाद में मुनाकिद होने वाले मुकाबले नात खानी में अव्वल पोजिशन हासिल करने वाले नात खां बच्चे और बच्चियाँ इन्होंने शिरकत की और इसके चार मरहले थे, चारों मरहले आपने समाअत फरमाए। इसके पहले दो मराहिल में 15 साल से कम उम्र के बच्चे और बच्चियों ने शिरकत की और दूसरे, तीसरे और चौथे मरहले में 15 से 25 साल के उम्र के दरमियान के बच्चे और बच्चियों ने शिरकत की। अब इनके दरमियान जो मुकाबला हुआ उसके अव्वल दोम सोम आने वालों का नाम जो है उसके लिए आप भी मुंतजर, हम भी मुंतजर। समय ने आपको लिए चलते हैं वापस पाकिस्तान नेशनल काउंसिल ऑफ द आर्ट्स PNCA ऑडिटोरियम, जहां ये कुल पाकिस्तान मुकाबला नात खानी का एहतमाम किया गया है। इसके मेज़बान हैं हामिद जहूर। हम आपको अब से कुछ ही लम्हों में लिए चलेंगे PNCA ऑडिटोरियम, जहां ये कुल पाकिस्तान मुकाबला नात खानी का एहतमाम किया गया है। इसका एहतमाम रेडियो पाकिस्तान और पाकिस्तान टेलीविजन ने मिलकर किया है। आइए सामईन, हम आपको लिए चलते हैं PNCA ऑडिटोरियम, जहां इस कुल पाकिस्तान मुकाबले नात खानी का एहतमाम किया गया है। इस बाबरकत महफिल के मेजबान हैं हामिद सुहूर और यहां वफाकी वजीर बराए मजहबी उमूर और मेहमान खसूसी के तौर पे मौजूद हैं सरदार मोहम्मद यूसुफ।

0: दिन के 2 बजे हैं। अस्सलामुअलैकुम, ये रेडियो पाकिस्तान है। शहरयार अहमद से खबरें सुनिए। अहम खबरों का खुलासा। वज़ीर आज़म ने मौशी तरक्की के फ़रोग और जमहूरियत को मजबूत बनाने के लिए एक बार फिर अपोजिशन को तामीरी मुज़ाकरात की दावत दी है। वफाकी काबीना ने डिफेंस फोर्सेस एक्ट 2026 के मसविदे और नेशनल कमांड अथॉरिटी एक्ट 2010 में तरामीम की मंजूरी दी है। नायब वज़ीर आज़म और शाम के वज़ीर ख़ारिजा ने इलाकाई सूरतेहाल पर तफसीली बातचीत की। पाकिस्तान के खिलाफ लीड्स क्रिकेट टेस्ट के दूसरे रोज इंग्लैंड अपनी पहली इनिंग्स का खेल 112 रन 2 खिलाड़ी आउट पर आज फिर शुरू करेगा।
1: कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, क्वेटा, हैदराबाद, फैसलाबाद, सियालकोट, मुल्तान, बहावलपुर, सरगोधा, लाड़काना, मिट्टी, बिच्छा, खैरपुर, कोहाट, बन्नू, एबटाबाद एंड मीरपुर आजाद कश्मीर, द बिगेस्ट एफएम रेडियो नेटवर्क ऑफ पाकिस्तान। ट्यून इन टू द वन अबव एफएम 101.1
2: फॉर लेटेस्ट न्यूज हेडलाइंस आफ्टर एवरी वन आवर ट्यून इन टू एफएम 101 द चैनल ऑफ रेडियो पाकिस्तान।

0: We'll be right back after this short commercial break. Stay tuned.
1: मूसलाधार बारिश और शदीद झालावारी लोगों को जख्मी और इमारतों, गाड़ियों और खड़ी फसलों को नुकसान पहुंचा सकती है। तेज और मुसलसल बारिशों से पानी छतों, घरों की बुनियादों और जोड़ वगैरह में इकट्ठा होकर बाइसे तकलीफ और जानी और माली नुकसान का सबब बन सकता है। इससे बचाव के लिए ये चंद एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। दीवारों, छतों और बुनियादों में दरारों का मुकम्मल मुआयना करें। दीवारों और छतों में शगाफ की मरम्मत करें और इस बात को यकीनी बनाएं कि तमाम स्ट्रक्चर तेज बारिशों को बर्दाश्त करने के काबिल है। इमारतों की उखड़ती टाइलें या ईंटें उनको महफूज कर लें या हटा दें जो शदीद बारिशों के दौरान उखड़ सकती हैं और खतरा बन सकती हैं। इस बात को यकीनी बनाएं कि निकासी आपके निजाम में मलबा या कचरा ना हो ताकि पानी के जमा होने से बचा जा सके।

0: सुबहर के 3 बजे हैं। अस्सलाम वालेकुम, ये रेडियो पाकिस्तान है। शहरयार अहमद से खबरें सुनिए। अहम खबरों का खुलासा। वज़ीर आज़म ने मौशी तरक्की के फरोग और जमहूरियत को मजबूत बनाने के लिए एक बार फिर अपोजिशन को तामीरी मुज़ाकरात की दावत दी है। वफाकी काबीना ने डिफेंस फोर्सेस एक्ट 2026 के मुसद्दे और नेशनल कमांड अथॉरिटी एक्ट 2010 में तरामीम की मंजूरी दी है। नायब वज़ीर आज़म और शाम के वज़ीर ख़ारिजा ने आज इस्लामाबाद में इलाकाई सूरत हाल पर तफसीली बातचीत की। वज़ीर पेट्रोलियम ने समुंदर में तेल की तलाश बिलखसूस ऑफ शोर के मनसूबों में बड़ी सरमायाकारी राग़िब करने के लिए मुस्तकिल और तवील मुद्दती पॉलिसियों की ज़रूरत पर जोर दिया है।
1: हालात चाहे जैसे भी हो, तालीम का सफर रहे जारी, ना पेट्रोल का खर्चा ना आने जाने की फिक्र। वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान की पहली ऑनलाइन यूनिवर्सिटी जहां कहीं भी बैठे किसी भी वक्त अपनी तालीम जारी रख सकते हैं। फैकल्टी ऑफ आर्ट्स, CSNIT, एजुकेशन मैनेजमेंट और साइंस एंड टेक्नोलॉजी में दाखिले जारी। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए www.vu.edu.pk विजिट करें या 1288 पर कॉल करें। वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान, तालीम कहीं भी कभी भी।
2: दिस इज FM 101.1।
3: कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, क्वेटा, हैदराबाद, फैसलाबाद, सियालकोट, मुल्तान, बहावलपुर, सरगोधा, लाड़काना, मिट्टी, बिच्छा, खैरपुर, कोहाट, बन्नू, एबटाबाद एंड मीरपुर आजाद कश्मीर। द बिगेस्ट FM रेडियो नेटवर्क ऑफ पाकिस्तान। To the one above, FM 101.
4: For latest news headlines, after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan.

0: सुनते रहिए FM 101 101 101।
1: We will be back after this short commercial break. Stay with us.
2: सफरे हज का आगाज मुकम्मल सुकून के साथ वजारत मजहबी उमूर के ऑफिशियल और खुसूसी बैंकिंग पार्टनर HBL इस्लामिक आपके हज के मुकद्दस सफर में हर कदम पर आपके साथ है। अपनी हज अकसात की अदायगियां मुल्क भर में मौजूद 1700 से ज्यादा HBL ब्रांचेस, डिजिटल चैनल्स, मोबाइल ऐप, PSID पेमेंट्स या डेबिट और क्रेडिट कार्ड्स के जरिए आसानी से जमा करवाएं। सफरे हज में आपका खिदमत गुजार, जहां ख्वाब वहां HBL। शराइत और ज़वाबित लागू हैं।
3: There's music and then there's magic. One above FM 101.

0: there's music, and then there's magic. One Above, FM 101.
1: We will be back after this short commercial break. Stay with us.
2: सफरे हज का आगाज मुकम्मल सुकून के साथ वजारते मजहबी उमूर के ऑफिशियल और खुसूसी बैंकिंग पार्टनर HBL इस्लामिक आपके हज के मुकद्दस सफर में हर कदम पर आपके साथ है। अपनी हज अकसात की अदायगियां मुल्क भर में मौजूद 1700 से ज्यादा HBL ब्रांचेस, डिजिटल चैनल्स, मोबाइल ऐप, PSID पेमेंट्स या डेबिट और क्रेडिट कार्ड्स के जरिए आसानी से जमा करवाएं। सफरे हज में आपका खिदमत गुजार, जहां ख्वाब वहां HBL। शराइत ज़वाबित लागू हैं।
0: There's music and then there's magic. One Above, FM 101.

0: there's music, and then there's magic. One Above, FM 101.
1: और अब वक्त है कमर्शियल ब्रेक का।
2: सफरे हज का आगाज मुकम्मल सुकून के साथ वजारत मजहबी उमूर के ऑफिशियल और खुसूसी बैंकिंग पार्टनर HBL इस्लामिक आपके हज के मुकद्दस सफर में हर कदम पर आपके साथ है। अपनी हज अकसात की अदायगियां मुल्क भर में मौजूद 1700 से ज्यादा HBL ब्रांचेस, डिजिटल चैनल्स, मोबाइल ऐप, PSID पेमेंट्स या डेबिट और क्रेडिट कार्ड्स के जरिए आसानी से जमा करवाएं। सफरे हज में आपका खिदमत गुजार, जहां ख्वाब वहां HBL। शराइत ज़वाबित लागू हैं।

0: there's music, and then there's magic. One Above, FM 101.
1: आइए लेते हैं कमर्शियल ब्रेक।
2: सफरे हज का आगाज मुकम्मल सुकून के साथ वजारत मजहबी उमूर के ऑफिशियल और खुसूसी बैंकिंग पार्टनर HBL इस्लामिक आपके हज के मुकद्दस सफर में हर कदम पर आपके साथ है। अपनी हज अकसात की अदायगियां मुल्क भर में मौजूद 1700 से ज्यादा HBL ब्रांचेस, डिजिटल चैनल्स, मोबाइल ऐप, PSID पेमेंट्स या डेबिट और क्रेडिट कार्ड्स के जरिए आसानी से जमा करवाएं। सफरे हज में आपका खिदमत गुजार, जहां ख्वाब वहां HBL। शराइत ज़वाबित लागू हैं।

0: there's music, and then there's magic. One Above, FM 101.
1: आइए लेते हैं कमर्शियल ब्रेक।
2: सफरे हज का आगाज मुकम्मल सुकून के साथ वजारत मजहबी उमूर के ऑफिशियल और खुसूसी बैंकिंग पार्टनर HBL इस्लामिक आपके हज के मुकद्दस सफर में हर कदम पर आपके साथ है। अपनी हज अकसात की अदायगियां मुल्क भर में मौजूद 1700 से ज्यादा HBL ब्रांचेस, डिजिटल चैनल्स, मोबाइल ऐप, PSID पेमेंट्स या डेबिट और क्रेडिट कार्ड्स के जरिए आसानी से जमा करवाएं। सफरे हज में आपका खिदमत गुजार, जहां ख्वाब वहां HBL। शराइत ज़वाबित लागू हैं।
0: There's music, and then there's magic. One Above, FM 101.

यूं तो उनसे और मिलना होता हमारा, और क्या, और क्या होता, क्या हुआ, ये बातें बहुत अच्छी लगी।

मैं समंदर के किनारे पर था और हवा बहुत ठंडी थी। वो हवा थी या मेरी मोहब्बत का कोई गुजरता पहर था जो मुझे नापसंद था। इस बात का जवाब तो मुझे मिला नहीं, क्योंकि कुछ दिनों की ये मुलाकातें

कुछ दिल में रह गया कि अब दिल की सुनूं तो सिर्फ मेरी आवाजें गूंजती हैं। वो जा रही थी और हाले दिल आंखों से बह रहा था। हाले दिल का एक लम्हा मेरी आंखों से होता हुआ मेरे जूते पर जा गिरा। वो जूता आज भी मैं पहनने की हिम्मत नहीं करता। कुछ दिनों की ये मुलाकातें बहुत अच्छी लगी। उससे जो कुछ हो सकी बातें बहुत अच्छी लगी।

0: रात के 10 बजे हैं। अस्सलाम वालेकुम, ये रेडियो पाकिस्तान है। मोहम्मद अनीस से खबरें सुनिए। पहले अहम खबरों का खुलासा। वज़ीर-ए-आज़म ने एक बार फिर हिज़्ब इख्तलाफ को तामीरी मुज़ाकरात के लिए हुकूमत के साथ मिल बैठने की दावत दी है। पाकिस्तान और शाम ने बाहमी दिलचस्पी के तमाम शोबों में दो तरफा तआवुन मजीद मुस्तहकम करने पर इत्तफाक किया है। अक़वाम-ए-मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने मकबूजा मगरबी किनारे में नई इसराइली आबादियों के क़याम पर तशवीश का इजहार किया है। और पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान पहले क्रिकेट टेस्ट के दूसरे रोज का खेल लीड्स में जारी है। और अब खबरें तफसील के साथ। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने एक बार फिर हिज़्ब इख्तलाफ को हुकूमत के साथ तामीरी मुज़ाकरात के लिए मिल बैठने की दावत दी है। उन्होंने आज रेडियो नेटवर्क ऑफ पाकिस्तान।
1: There's magic. One above FM 101.
2: Coming up next, RJ Talk. On your radio dial, keep it locked. Coming up next, RJ Talk. On your radio dial, keep it locked.

Alright, जी, वेलकम बैक. वक्त हो चुका है 10:50 FM 101 रेडियो पाकिस्तान के लाहौर स्टूडियो से. आप सुन रहे हैं नाइट थेरेपी विद आरजे डॉक्स और आज है जी 22 अगस्त 2026. आपका मेरे साथ होता है 12 बजे तक और जुमेरात वाले दिन हम बात करते हैं साइकोलॉजी ऑफ कलर्स पे. लास्ट टाइम हम नहीं कर पाए थे क्योंकि लास्ट टाइम चल रही थी सेलिब्रेशन 14 अगस्त की. एंड थैंक यू वेरी मच जिन लोगों ने मुझे लाइव पे ज्वाइन किया और जिन लोगों ने मुझे पैगामात भेजे, आप सबका बहुत शुक्रिया जी. थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग. सबसे पहले मैसेज आया फिजा राजपूत का, क्या बात है आपकी. हाँ सोहेल बास, यू ब्यूटी सर, क्या बात है. अच्छा झूठियां तरीफा करी जाओ, बट आई डोंट माइंड किया करें, अच्छा लगता. इस्लाम गुजर ने इस्लाम किया. वालेकुम अस्सलाम. कवल नाज है, नाइस, बहुत शुक्रिया. गुलाब है, अस्सलाम वालेकुम जी. वालेकुम अस्सलाम सर जी, बेशक जी. आप भी सरताश, इतनी मुश्किल बातें कैसे कर लेते हैं. कौन सी मुश्किल बात की मैंने. सलाम बॉस. अबू बकर जान है, वालेकुम अस्सलाम. मैं ठीक हूँ, आप बताओ. माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया जी, बेशक सच कहा जी. अच्छा आज मैं थोड़ा जगह आज डिफरेंट कीता ना. कलाम सुन के ज़रा वो दिल कर रहा है मेरा करने का बात है. सोहेल बास ने सलाम किया था. वालेकुम अस्सलाम, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आपकी ज़ियारत नसीब हुई. अल्लाह. नौशीन राशिद है, अस्सलाम वालेकुम सर. वालेकुम अस्सलाम रशीद, सॉरी राशिद बोल देता, रशीद. कैसे हैं आप. मैं ठीक हूँ, आप बताइए. सदा जी आज डॉक्स सर, चार्मिंग वॉइस, थैंक यू, बहुत शुक्रिया जी. आज डॉक्स वाइब ने सलाम किया. वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप. मैं वैसे का वैसा ही हूँ, आप बताएं आप कैसे हैं. और आज के दिन हम बात करेंगे ग्रे कलर पे और मैक्सिमम कॉल्स लेते हैं और ताकि आज के दिन भी मैक्सिमम कॉल्स ली जाएं, आपका गला दूर होता रहे. और इसके साथ जिन लोगों के पास मेरी आवाज़ पहुंचती है और आपके पास अगर इंटरनेट की रसाई मौजूद नहीं और प्रोग्राम का हिस्सा बनना

0: चाहते हैं, कोई भी बात करना चाहते हैं, कुछ भी पूछना चाहते हैं। और रंगों पे हम बात करते हैं, वैसे तो रंग, आपका उठना बैठना, आपकी बातें, अक्सर आप किसी से बात करते हुए जजमेंटल हो रहे होते हैं, जजमेंटल आउट ऑफ योर एक्सपीरियंस, यानी आपका तजर्बा जो होता है वो आपको बहुत कुछ सिखाता है। तो उस तजर्बे की बुनियाद पर आप अक्सर बात करते हैं कि फलां शख्स ठीक नहीं, फलां शख्स की ना परवर है, फलां शख्स ऐसे है, वैसे है, बहुत सारी इस तरह की आप बातें करते हैं। तो इसी तरह से लोगों के कलर, उनके अपना नकूश, उनके बालों का स्टाइल, उनका उठना बैठना, उनका लिबास, उनकी गुफ्तगु और उनकी चॉइसेस भी उनकी पर्सनैलिटी के बारे में कुछ ना कुछ बता रही होती हैं। सो उसी तरह से ये जो रंगों की चॉइस है, ये भी आपकी पर्सनैलिटी के बारे में कुछ ना कुछ रिफ्लेक्ट करती हैं। तो यही है इसके पीछे जिस पे हम बात करते हैं, साइकोलॉजी ऑफ कलर। हाल नूर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। विकास अहमद ने हाय किया, हेलो हाउ आर यू विकास। कल्ब मोमिन ने सलाम किया, वालेकुम अस्सलाम। तो इसके अलावा कोई भी आप बात करना चाहें आप कर सकते हैं। अगर इंटरनेट की आपके पास रसाई मौजूद नहीं, अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाना है, आपने 101 लिखना है, स्पेस देनी है, अपना नाम और पैगाम लिखना है और इसको भेज देना है आपने 4471 पे। फिर से दोहराता जाऊँ, अगर इंटरनेट की रसाई मौजूद नहीं और आप प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं, कोई भी बात कहना चाहें, कुछ नहीं तो पाकिस्तान जिंदाबाद लिख दें, पता चले यू गाइज आर लिसनिंग एंड मुझे अपने मोबाइल की राइट मैसेज ऑप्शन में जाके आपने SMS लिखना है, 101 लिखें, स्पेस दें, अपना पैगाम, अपना नाम और एनीथिंग यू वांट टू शेयर, यू वांट टू आस्क, और वो लिखें और भेज दें 4471 पे। और इसके अलावा आप मुझे कॉल कर सकते हैं 0421100101। फिर बोलता हूँ 0422111001। आशक खास खिली साहब, सलाम अलैकुम। आरजे वालेकुम अस्सलाम, आई एम आल्सो लिसनिंग। ओके जी, हाल नूर, बड़ी मेहरबानी, आप सुन रही हैं और प्रोग्राम सुन रहा हूँ। नाहिद अख्तर की आवाज़ प्ले करें, शुक्रिया। और सबको खास सलाम, नाचीज आशिक खास खिली, खास खिली, अच्छा खास खिली शहर नवाबशाह से, बड़ा मुश्किल नाम है। जब बहुत आवाज़दार होते हैं आप, तब क्या करते हैं? तब मैं कोशिश करता हूं बिल्कुल आप लोगों के पैगामात को इग्नोर कर दूं। वैसे मेरे बारे में ओपिनियन यही रखा जाता है कि आप आवाज़दार हैं एंड आई एम हैप्पी टू बी आवाज़दार मोस्ट ऑफ द टाइम। ठीक है, इस्लामाबाद लेडी पुलिस स्टेशन आपका शो सुना जा रहा है, लेडी स्टेशन, थैंक यू वेरी मच। लेडी स्टेशन, लेडी स्टेशन आपका शो, लेडी स्टेशन क्या होता है, ये कौन सा है, लेडी पुलिस स्टेशन है, कौन सा स्टेशन है? बाहर जहाँ पे भी सुना जा रहा है जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आप सुन रहे हैं और जो भी आप काम कर रहे हैं, हम आपके मशकूर हैं जी। आपकी सर्विसेज चाहे पब्लिक सेक्टर में हैं या प्राइवेट सेक्टर में हैं, जिससे फ़ायदा है लोगों को, तो थैंक यू वेरी मच जी। तो कॉल ले लें, क्या करें, या आगे की तरफ बढ़े। आज के दिन हम ग्रे कलर पे बात करने वाले हैं, सुरमई रंग होता है, नहीं होता। सो एलबासा जी, लास्ट टाइम क्वेश्चन किया था, पाकिस्तान की आज़ादी का ऐलान इसी लाहौर स्टेशन से हुआ था, बिल्कुल जी, कि इसी जगह से हुआ था, लेकिन वो स्टेशन थोड़ा दूसरी जगह था, लेकिन हुआ लाहौर से था। अस्सलाम वालेकुम जी।
1: वालेकुम अस्सलाम, हर बात है जिसकी प्यारी, हैदराबाद से कॉल करते हैं आपको, शाहिद अंसारी।
0: आपकी फिर कॉल मिल गई यार, मैं तो कहा था नहीं मिले।
1: फिर ऑफिया में क्या?
0: नहीं, ऑन एयर है यार, लेकिन मुझे अफसोस अच्छा। हो रहा है आपकी दूसरी दफा कॉल क्यों मिली यार।
1: साजिए से कोई ना मर जाए, खुदा करता है कतला राहत में तलवार भी नहीं। अच्छा, मैं आपके एक लफ्ज की निशानदेही करना चाह रहा हूँ, हाथ जोड़ के माफी मांग रहा हूँ माइंड लिखे
0: जी जी।
1: आप कल से एक लफ्ज कह रहे हैं गुलाब,
0: कौन सा
1: नाम, एक नाम ले रहे हैं आप गुलाब,
0: गुलाम, गुलाम।
1: हाँ, जब क्या वो लफ्ज है गुलाब,
0: गुलाब
1: गैन से पढ़ रहे हैं आप, गैन से पढ़ रहे हैं उसको,
0: नहीं नहीं गुलाब, अच्छा वो आपको नहीं, वो मिक्स हो जाता है गैन और गाफ ना अक्सर बोलते हुए, वो आप ठीक कह रहे हैं, उसे वजाहत से बोलना चाहिए गुलाब गुलाब
1: गुलाब,
0: लेकिन जबान उर्फ आम में ना वो गुलाब जो है गुलाब हो गया हुआ है। हाँ गुलाब का फूल देना है, और गुलाब का फूल समझ रहे हैं।
1: और माजरत के साथ मतलब आप लोग जो है ना लाहौर वाले वो गुलाब बोलते हैं।
0: नहीं नहीं हम भी गुलाब बोलते हैं, गुलाब ही बोला जाता है। वो फिर जब होता है ना, अब देखें तलफ़ुस अगर तो यहाँ पे अगर वो बिल्कुल मैं करना शुरू कर दूँ ना, बहुत सारे लफ्ज़ जो हैं वो मुझे भी तंग करने लग जाते हैं, तो फिर रस्मी रस्मी गुफ्तगू करनी पड़ती है ना, फिर गुलाब को गुलाब कहना पड़ता है, समझा करें ना जरा।
1: तो सही हो,
0: लेकिन आपने अच्छी
1: तो
0: बात की है, हमें गुलाब ही कहना चाहिए और है भी गुलाब।
1: सुने तो सही ना, आपका तंग क्यों ना करे, अब तो लेडी पुलिस स्टेशन से भी कॉल आ रही है भाई।
0: वो इसीलिए सुन रहे हैं, मैंने कोई उनके खिलाफ बात की होगी, वो ताड़ के बैठे हैं इन्हें पकड़े
1: बाहर निकल तो तेरे दसा
0: ठीक है। क्या कहना चाहेंगे अंसारी साहब,
1: मौजू बता दें कोई कलर है, या अगर सुफियाना कलाम सुना दूं जैसा बोले आप।
0: जो दिल करता है सुनाए यार।
1: दामन लगिया मौला में तो तेरिया, मस्तो मस्त कलंदर में तो तेरिया, दामन दिल छिपाल जी सिवानी लाल, दामन दिल छिपाल जी कलंदर लाल, मैं तो तेरिया मैं तो तेरिया, दामन लगिया मोला मैं तो तेरिया, भर भर देंदा ए जाम ताकि मस्त मदा, भर भर देंदा ए जाम ताकि मस्त मदाम, भर भर देंदा ए जाम ताकि मस्त मदाम, मैनू खाली नचाल जी सिवानी लाल, मैनू खाली नचाल जी कलंदर लाल।
0: एक मिनट तो इस्लामाबाद वालों खबर लगा दो,
1: दामन लगिया मौला मैं तो तेरिया।
0: आ गई खबरें,
2: बजे हैं। अस्सलाम वालेकुम, ये रेडियो पाकिस्तान है, मोहम्मद अनीस से खबरें सुनिए। पहले अहम खबरों का खुलासा। वज़ीर-ए-आज़म ने एक बार फिर हिज़्ब इख़्तिलाफ़ को तामीरी मुज़ाकरात के लिए हुकूमत के साथ मिल बैठने की दावत दी है। पाकिस्तान और शाम ने बाहमी दिलचस्पी के तमाम शोबों में दो तरफा तआवुन मज़ीद मुस्तहकम करने पर इत्तफाक किया है। अक़्वामे मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने मकबूज़ा मगरबी किनारे में नई इसराइली आबादियों के क़याम पर तशवीश का इज़हार किया है। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान पहले क्रिकेट टेस्ट के दूसरे रोज का खेल लीड्स में जारी है।
3: This is FM 101.
0: हेलो जी, वेलकम बैक, और वक्त हो चुका है 11:45। मेरे साथ अभी शाहिद अंसारी साहब थे, खबरें आ गई जिसकी वजह से जरा उनकी कॉल खामोशी पे डालनी पड़ी, मनकता तो नहीं की मैंने। अच्छा जी, विकास अहमद कहते हैं कॉल नंबर बताएं, मंडी बहावद्दीन वालों की कॉल मिलाएं, आपके रेडियो पे कॉल नहीं मिलती, इस्लामाबाद मिलती है, कुछ करें मंडी वालों की बात करवाएं अपने साथ। आज मैं ज़्यादा से ज़्यादा कॉल्स लूँगा, विकास आपकी कॉल मिल जाएगी। 0421100101। अगर आपको ये नहीं आया तो अंग्रेजी में अंग्रेजी वाला समझ आएगा 0420111001, इस पर आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं। और ग्रे कलर के बारे में बात करेंगे, वाइट और ब्लैक के दरमियान का कलर होता है जिसे न्यूट्रल कलर वैसे तो समझा जाता है, और आमतौर पे इसके बारे में ये तसव्वुर किया जाता है बड़ा सैड और उदासी और इस तरह का कलर होता है, लेकिन एक्चुअली ऐसे नहीं होता, इट इज़ समथिंग रियली डिफरेंट एंड इंटरेस्टिंग। हेलो कोका कोला पिला दे आगे। हाँ जी,
4: आज के हाल है?
0: हाल अच्छा है।
4: वो बिच मिला कर उस्ताजी बिचारा रेडियो एंड टीवी पर कार से अकबर गुजर खान तू आदर हो गया उस्ताजी, बड़ी आदरी कबूल करो।
0: क्या बात है जी, क्या बात है शाहिद साहब, आप ठीक हैं?
4: ओ सादे मोहतरम
0: जनाब,
4: अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। कल भी कॉल करते रहे लेकिन कॉल ना मिल सकी, इंतजार में बैठे।
0: हाय हाय हाय हाय, वेरी सैड वेरी सैड, बहुत अफसोस हुआ मुझे इस बात पे। आपकी कॉल क्यों
4: नहीं? आपने बड़ा खूबसूरत जो नातिया शेर पढ़ा है मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद आया है माशाल्लाह। और अबे आपको रबी अव्वल की बहुत बहुत मुबारक हो।
0: सारों को रबी अव्वल की बहुत बहुत मुबारक हो जी,
4: खैर मुबारक हो।
0: पूरे आलम इस्लाम को रबी अव्वल का महीना मुबारक हो।
4: मुबारक हो, खैर मुबारक, बहुत शुक्रिया उस्ताद मोहतरम। ये आपने शेर कौन सा पढ़ा था पहले शुरू में?
0: मैंने पढ़ा था खुदा का जिक्र करे।
4: अच्छा सुने सुने जरा
0: जी,
4: खुदा
0: जी,
4: का जिक्र करे जिक्र मुस्तफा ना करे। खुदा का जिक्र करे जिक्र मुस्तफा ना करे, हमारे मुंह में हो ऐसी जबा खुदा ना करे, करे। इससे आगे मुकम्मल करूंगा। दरे रसूल पे ऐसा कभी नहीं देखा, दरे रसूल पे ऐसा कभी नहीं देखा, कोई सवाल करे वो अता ना करे।
0: हाय हाय हाय हाय हाय हाय, क्या बात।
4: मैंने
0: अच्छा।
4: मुकम्मल किया है, आपने ये शेर पढ़ा है लेकिन इसको मुकम्मल किया है कि दरे रसूल पे ऐसा कभी नहीं, उस्ताद जी,
0: जी
4: दरे
0: जी,
4: रसूल
0: जी,
4: पे
0: जी,
4: ऐसा
0: जी,
4: कभी नहीं देखा,
0: जी जी,
4: कोई सवाल करे वो अता ना करे,
0: ना करे। बिल्कुल ठीक कह रहे हो, बिल्कुल।
4: शाहिद सारी साहब आए हैं, वेलकम कहते हैं। असल में मेरा क्या है, खबरनामा आ गया था।
0: जी जी बिल्कुल, खबरनामा आ गया। आप मुझे बताएं आपको रंग कौन सा पसंद है?
4: उस्तादे मोहतरम बता दूं कौन सा रंग पसंद है।
0: हाँ जी,
4: मुझे
0: वो जो चढ़ जाए वो वाला रंग।
4: जी मुझे सफेद रंग बहुत पसंद है। उसकी वजह,
0: वजह
4: पूछे
0: जी, वजह बताएं।
4: उस्तादे मोहतरम वजह ये है कि श्वेत रंग इसलिए पसंद है, लठा चाहिए मुझे, लठे लठे का कपड़ा,
0: लठे की चादर उत्ते।
4: क्योंकि उसकी वजह ये है कि सब लोगों ने उसी जगह जाना है।
0: हाँ जी सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं।
4: सब लोगों ने दो रात रात का कपड़ा होगा तो सब लोगों ने उसी जगह जाना है, इसलिए मुझे लटा और सफेद कपड़ा में बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ।
0: बहुत शुक्रिया शाहिद साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर कॉल जी।
4: और सुने ना उस्ताद, भी सलाम देना चाहता हूँ। मेरी बेटी है, एक रक्षा बेटी है, ये लाहौर से आती है, उन्हें मेरी तरफ से, और अनिला बेटी हमारी बेटी, उन्हें बहुत हमारी तरफ से बहुत बहुत सलाम, और शाहिद इंसारी साहब को बहुत बड़ा सलाम। और आपका जो मुझे रंग आप अक्सर जिक्र करते रहते हैं तो मुझे पीला रंग ज्यादा पसंद है।
0: आपको पीला रंग पसंद है, आपको थोड़ी देर बाद लगता है काला भी आ जाएगा पसंद।
4: काला काला काला रंग भी है, ये भी अच्छा है ना, पीली रंग है बादशाह, ये भी काला रंग।
0: चले चले, मेहरबानी सर, थैंक यू वेरी मच फॉर योर कॉल जी।
4: आज दस्ता जी जान के चढ़ाने हो।
0: ओ बस तुसा नहीं समझ नहीं आंदी ना जी,
4: क्या पटवारी नहीं समझ लग रही माड़ी।
0: आंदी है ना जी, बाकी हुन टाइम देखो ना कितना टाइम हो गया, बस करो ना जी।
4: ओ आने कोठे तू उड़कावा।
0: अच्छा जी,
4: कोई कोठे तू उड़कावा
0: जी, आज
4: पता दस जागदा, आज पता दस जागदा तेरे मुंह विच खड़ पावा।
0: ओके, वाह वाह वाह वाह, क्या बात है। हुन मेरा दिल कर रहा है मैं कहां बन जावा, तुसी खंड पाओगे मेरे।
4: चलो
0: थैंक यू जी, थैंक यू।
4: गलती होगी इस बात के, माफ कर दे।
0: ओके ओके,
4: मैं आपकी जोड़ कर माफी।
0: ओके ओके, थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। ठीक है, अच्छा, हर किसी का अपना प्यार का अंदाज है। किरण शहजादी ने सलाम किया, वालेकुम सलाम। किसा फातिमा ने सलाम किया, आज डॉग्स वालेकुम सलाम जी। और ओके ठीक हो गया, वेरी वेल डन जी। हम ग्रे कलर के बारे में आज के दिन बात करने वाले हैं। यू कैन टेल मी अबाउट योर कलर, व्हिच कलर यू लाइक, और क्यों पसंद करते हैं, वैसे इसकी क्या वजह है। थोड़ा थोड़ा इस पर भी बात करते जाते हैं, और कंपैरिजन एंड कंपैटिबिलिटी पर भी बात करेंगे हम। कंपैटिबिलिटी पर करेंगे, कंपैरिजन मैं नहीं कर रहा, फिर इसमें इख्तलाफ आ जाता है। ग्रे कलर के बारे में आमतौर पर राय पाई जाती है, बट सैड किस्म के इस पे इंप्रेशन होता है, बट इट रिप्रेजेंट बैलेंस, तवाजन और गैर जानबदारी, ठीक है, मैच्योरिटी, पुख्तगी को ये प्रेजेंट करता है, विजडम को भी प्रेजेंट करता है, स्टेबिलिटी और प्रैक्टिकल इंडिपेंडेंस एंड सोफिस्टिकेशन, और इमोशनल कंट्रोल भी होता है, और इसमें जो है ना प्राइवेसी का एलिमेंट भी पाया जाता है। और ये ग्रे कलर के बारे में ना अमूमी तौर पे अगर आप वैसे इसके साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट्स पे अगर बात करें, और अगर साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स, ये तो इम्पैक्ट्स है ना जी ओवरऑल, जिस पे इसको एवेल्यूएट करते हैं, ग्रे कलर रिप्रेजेंट किसको करता है, और ये कलर्स की जो साइकोलॉजी होती है ना, आपको पता है जो साइन बोर्ड्स और आजकल कलर स्कीमिंग लोगोज और ये सारी चीज़ें बनती है ना, इन सारी चीज़ों को कंसिडर करके बनाया जाता है कि किस कलर से किस चीज़ को हम मुंसलिक करते हैं और क्या चीज़ किस हवाले से है। सफ़ेद रंग है, सब्ज़ रंग है, ब्लू कलर है, उससे आपके जहनों पे इम्पैक्ट आता है। ब्लू को देख के बड़ी प्रोफेशनल से फील आ रही होती है, और ग्रीन को देख के आपको हेल्दी फील आ रही होती है, वाइट को देख के आपको बड़ा पीसफुल इन्वायरमेंट की फील आ रही होती है। और आजकल तो बहुत ज़्यादा ये चल रहा है ना जी, पीस पीस एंड वाइट घरों में बहुत ज़्यादा इन है, वाइट ऑफ वाइट और इस तरह के वाइट के शेड आजकल कंस्ट्रक्शन में आपको बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे होते हैं, इट रिफ्लेक्ट्स पीस। इसी तरह से ग्रे कलर है, ग्रे कलर काम कूल रिलैक्स मगर संजीदा, संजीदा किस्म के होते हैं और प्रोफेशनल होते हैं। इसके साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स के अगर बात करें, कंट्रोल्ड एंड सोफिस्टिकेटेड किस्म का इनका बिहेवियर होता है लोगों का। दिस इज द साइकोलॉजी ऑफ ग्रे कलर। आगे इसकी डेप्थ में भी जाएंगे। कॉल्स ले रहा हूँ, मैंने कल भी कॉल्स ली थी, आज भी लूंगा मैं, ज्यादा से ज्यादा कॉल्स लेते हैं, गिले शिकवे दूर करें। अस्सलाम वालेकुम।
5: वालेकुम सलाम एंड अस्सलाम वालेकुम वानवान के सभी सुनने वालों को, मैं एकदम से हंसता मुस्कुराता हुआ अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम जी।
5: मैं तो भाई जब असद भाई कहूँगी
0: जी जी,
5: मुझे असद नाम बहुत पसंद।
0: बहुत शुक्रिया जी,
5: बहुत बहुत प्यारा है, तो मैं तो असद शादी कहूँगी
0: जी। तो बहुत शुक्रिया जी।
5: हाँ जी हाँ जी, तो बहुत अच्छा शो, जबरदस्त शो आप कर रहे हो। पहले आपने अरफाना कलाम प्ले किए प्रोग्राम के शुरू में, मैं शुरू से सुन रही हूँ आपका।
0: बहुत शुक्रिया मैडम, बहुत शुक्रिया।
5: तो नवाजिश। नाम बता दूँ आपको, शायद नहीं पता चले, वैसे तो जितने भी आरजे आते हैं ना, मुझे नाम बताने की जरूरत नहीं पड़ती।
0: क्या बात है मैडम शमीम, आपको सारे जानते हैं।
5: वाओ जी वाओ वाओ, क्या बात है क्या बात है। तो आ जाए आपके टॉपिक की तरफ, के आपको कलर कौन सा पसंद
0: जी?
5: मुझे नीला ब्लू कलर और मेहरून कलर बहुत फेवरेट।
0: आपको लोगों में कौन से कलर पहने हुए लोग ज्यादा अच्छे लगते हैं?
5: लोग ज्यादा वाइट,
0: वाइट कलर पहने हुए लोग अच्छे लगते हैं, और इसकी क्या वजह है?
5: इसकी वजह ये है कि देखो, अगर हम अल्लाह के घर जाते हैं हज उमरा के लिए, तो वहाँ पर भी सब हाजियों ने ना वाइट कलर पहना होता है अहराम।
0: ओके।
5: और जब इंसान इस दुनिया से जाता है, अल्लाह को प्यारा होता है, उस वक्त सफेद कलर ही उनको पहनाया जाता है।
0: बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप,
5: तो इसलिए मुझे वाइट कलर है।
0: ओके ओके,
5: लोगों को पहना हुआ बहुत अच्छा लगता है
0: जी,
5: बिल्कुल। आखरत आखरत में भी जो ना वो ही मिलेगा सबको, और बहुत अच्छा शो। अब भी अरफाना काम चलेंगे या गाने की फरमाइश कर दूं एक की?
0: आप जो दिल करता फरमाइश कर दें।
5: वो एक गाना, उड़ गई नींदरा खलो गई रात, कदों दिन चढ़े कदों होवे मुलाकात, पंजाबी गाना है ये।
0: अच्छा
5: तो
0: जी,
5: कर देंगे। तो मेरी औलाद की जहाँ जहाँ तक आवाज आ रही है, सब सुनने वालों को मेरी तरफ से बहुत बहुत अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।
0: अल्लाह हाफिज़ जी, थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़ जी, अल्लाह हाफिज़। अच्छा जी, ये मैडम शमीम थी, काफ़ी हल्की सी आवाज़ आ रही थी उनकी। बहरहाल जी, मुस्तफ़ा ने मैसेज किया 4471 पे फ्रॉम अटक, कहते हैं सर क्या हाल हैं, बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपको सलामत रखे। अल्लाह आपको भी सलामत रखे। अच्छा जी, पाकिस्तान टेस्ट टीम में असद शफीक, अजहर अली, यूनुस खान के बाद कोई प्रॉपर बैट्समैन क्यों नहीं डेवलप हो रहा? उनके जाने के बाद टीम की कोई ख़ास परफॉर्मेंस नहीं देखी जा रही। यार मैं देखता ही नहीं मुस्तफ़ा भाई, मुझे नहीं पता। और तलहा, ओके ऊपर चलते हैं, तलहा का भी सलाम आया, वालेकुम अस्सलाम। आयशा हैदराबाद से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आपका शो बहुत अच्छा है, एक रिक्वेस्ट प्ले कर दें। चलो कोई गल नहीं, नदीम हज़ारवी का सॉन्ग है, प्ले करते। हाँ ये कहीं ना कहीं मैंने देखा, लेकिन अभी यहाँ पर कोई और एक गाना प्ले करते हैं, उसके बाद वापस आके आप लोगों के मैसेजेस शामिल करते हैं, आप लोगों के कॉल्स लेते हैं 04221100101। ग्रे कलर पे आज के दिन हम बात करने वाले हैं। यार ये गाना आज नवाज बहुत ज्यादा शदीद अशदीद। यार, कमाल है यार, कुछ ऐसे हिट कर देते हैं ना आप। अब्दुल हनान बिखरा, क्या बात। I just love this track. Anyways, you can call me 04221100101, 0421110001. इस पर आप मुझे कॉल कर सकते हैं, और कल भी मैंने कॉल्स लिया, आज मैं कोशिश करता हूँ बैक टू बैक ज़्यादा से ज़्यादा कॉल्स लूँ, इसलिए मैंने मौजू गुफ्तगू का नहीं रखा हुआ है, सच रेंडम किस्म की बातें करते हैं, आप लोगों की बातें सुनते हैं, ये गाना सुनते हैं और इसके बाद वापस आता हूँ। एंड यस, आप मैसेज कर सकते हैं अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में, जाइए 101 लिखें, स्पेस दें, अपना नाम और पैगाम लिखें, इसको भेज दें 4471 पे, कोई भी बात करना चाहते हैं आप कर सकते हैं।

0: हाँ लाइट जी, वेलकम बैक। वक्त हो चुका है 11:18 FM 101 रेडियो पाकिस्तान के लाहौर स्टूडियो से आप सुन रहे हैं नाइट थेरेपी विद आरजे डॉक्स, जिसमें आपका मेरा साथ होता है बुध और जुमेरात की शब रात 10 से 12 बजे तक। ओके, जो कलर हो गए हैं आप उनको पूछेंगे, डेफिनेटली आई विल ट्राई टू टेल यू अबाउट दोज कलर्स। कुछ ना कुछ तो ज़रूर बताऊंगा मैं उनके बारे में आपको। और ग्रे कलर पे आज हमारी बात चल रही है। चलो कोई गल नहीं, हैदराबाद में बैठी हैं और आप कहती हैं चलो कोई गल नहीं सुना दें, बड़ी गल मेरे दस्ते तमन्ना में तुम्हारा हाथ का होना बहुत हासिद बनाएगा, बहुत से दिल जलाएगा। क्या बात है आबिश जरताश, आपकी छा गई हैं आप। अच्छा, सजाद अली लाडला साहब ने सलाम किया, वालेकुम अस्सलाम जी, बहुत शुक्रिया आप आए और बड़ी छेती आए हो तुसी। चलो आ तो गए। एनीवेज, ग्रे कलर पे आज हम बात कर रहे हैं साइकोलॉजी ऑफ कलर में। बट अभी यहाँ पे कॉल लेते हैं 04221100101। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। होप आसमान, ये क्या नाम है, नाइस सॉन्ग, थैंक यू वेरी मच, हैप्पी बर्थडे बॉस। मेरी बर्थडे नहीं है फिजा जी। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ?
1: वालेकुम अस्सलाम
0: जी, थोड़ा जोर से बोलिए।
1: हमना उस्मान फ्रॉम लाहौर।
0: हमना, कैसी हैं आप?
1: मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं?
0: मैं भी अच्छा हूँ, मुझे लगता
1: सबको लगता है, कोई बात नहीं
0: है ना, आपको भी यही लगता, इसीलिए मैंने कहा मुझे भी लगना चाहिए,
1: अपने आप को अपने लिए अपना आप अच्छा लगना चाहिए।
0: नहीं, कभी कभी शीशे में देख के रान हो जाता है, कौन खुलता है यार। अच्छा, फिर बाद में याद आता ओ हो ये तो मैं ही हूँ। डर भी जाता है ना बंदा कभी कभी, मैं डर जाता हूँ अक्सर।
1: किस चीज़?
0: अपने आप को देख के, ओ ये कौन, ये क्या अजीब सी चीज है, फिर पता चलता अच्छा मेरा अपना ही चेहरा है। या सो कौन सा कलर पसंद है आपको? मल्टीपल कलर्स आपकी चॉइसेस में जरूर होते हैं, बट देयर इज ऑलवेज अ कलर।
1: मुझे वैसे लगता है कि मुझे लाइट कलर बहुत पसंद है,
0: लाइट कलर,
1: लेमन है, स्काई ब्लू है, लेकिन एट द सेम टाइम
0: मतलब आपको सीधा रंग कोई नहीं पसंद, पुठे सीधे पसंद है?
1: हाँ इस तरह ही, लेकिन ये कि जब मैं कोई स्पेसिफिक चीज सोचती हूँ कि किस कलर में हो तो वो ख्याल आता है कि ब्लैक हो तो अच्छा हो, लेकिन एट द सेम टाइम बाकी कलर्स भी अच्छे लगते हैं।
0: अच्छे लगते हैं, मतलब पता ही नहीं है मुझे मुझे क्या अच्छा लगता है, बस मुझे अच्छा लगता है कुछ ना कुछ।
1: वो चीजों पे डिपेंड करता है ना,
0: लोगों पे किस तरह का कलर अच्छा लगता है,
1: किसी
0: पे कलर कौन सा आपको ज्यादा अच्छा लगता है,
1: जो उससे सूट करे।
0: हाँ उस पे, हाँ उस पे कौन सा कलर सूट करता है बताएं। सिर्फ उसकी बात हो रही है, वो उनकी,
1: मेरे कोई उन उस नहीं है।
0: अच्छा फिर ठीक है, फिर चले बंदे की बात करें, किसी बंदे पे कौन सा कलर अच्छा लगता है।
1: अगर हर किसी अपनी अच्छी बात है, फॉर एग्जाम्पल किसी को रेड कलर बहुत अच्छा लगता है, मुझे पर्सनली रेड कलर बिल्कुल नहीं पसंद।
0: वेरी गुड, आप में काफी मर्दाना वजाहत पाई जाती है। अच्छा,
1: और मतलब हर बंदे से डिपेंड करता है, हर बंदे की पर्सनालिटी होती है, उस हिसाब से जो आप पे सूट करता है, जो आप जिसमें कम्फर्टेबल है वो पहनना चाहिए। और इसलिए मुझे लगता है कि मेरे पे व्हाइट कलर ज्यादा सूट करती है,
0: लाइट कलर।
1: हाँ, और ये कि साथ साथ लेकिन मुझे ब्लैक कलर बहुत पसंद है, कोई भी चीज़ है तो मुझे ऐसे लगता है कि ब्लैक होगी तो उससे ग्रे आएगी।
0: आपको लेमन कलर अच्छा लगता है?
1: हाँ जी।
0: आप दुकानदार से क्या कहती हैं, एक लीमू रंग का सूट देना निचोड़ के, इस तरह तो नहीं कहती?
1: मैं खुद शॉपिंग नहीं करती, मुझे बिल्कुल शॉपिंग है, जो करना आते हैं मेरी मम्मा खुद करती।
0: अच्छा ठीक है, आपने ये क्यों नहीं कहा मुझे येलो कलर पसंद है, लेमन कलर में क्या खास बात है, टेल मी द डिफरेंस। चलें,
1: लेमन थोड़ा लाइट होता है।
0: ओके, येलो शार्प होता है।
1: तेज होता है, मतलब एट टाइम चुपता है आंखों में।
0: अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा, चले चले ठीक कह रही हैं आप, जो भी कह रही हैं ठीक कह रही हैं।
1: ठीक कोई चीज सुनाऊं आपको?
0: हाँ सुनाए सुनाए, बिल्कुल सुनाए।
1: हसीब दोस्त की गजल है।
0: हाँ सुनाइए सुनाइए।
1: वो इतना जो हवादार समझ रखा है,
0: क्या
1: हमें रेत की दीवार समझ रखा है?
0: हाय हाय हाय हाय, दोबारा बताएं।
1: हम खुद को इतना जो हवादार समझ रखा है,
0: वाह वाह,
1: क्या हमें रेत की दीवार समझ रखा है?
0: वाह वाह वाह वाह,
1: हमने किरदार को कपड़ों की तरह पहना है।
0: वाह वाह,
1: हमने कपड़ों को किरदार समझ रखा है।
0: बहुत अच्छा बहुत अच्छा, वेरी नाइस।
1: मेरी संजीदा तबीयत पे भी शक है सबको, बाज लोगों के तो बीमार समझ रखा है।
0: वाह वाह क्या बात है जी, बहुत अच्छा, वेरी नाइस, बाज लोगों ने तो बीमार समझ रखा है, वेरी गुड।
1: इसको खुददारी का क्या पाठ पढ़ाया जाए, बीज को जिसने तो शिकार समझ रखा है।
0: हाय हाय हाय हाय हाय हाय, बहुत अच्छा, वेरी नाइस वेरी नाइस।
1: कहीं बे मौत ना मारा जाए।
0: अच्छा जी।
1: तू किसी दिन कहीं बे मौत ना मारा जाए, तूने यारों को मददगार समझ रखा है।
0: वाह वाह बहुत अच्छा, तूने यारों को मददगार समझ रखा है, अच्छा वेरी नाइस।
1: आपके प्रोग्राम में कोई कह रहा था कि पता नहीं किस मौके पे, अलबत्ता ये है कि बाकी जब आप प्रोग्राम करते हैं तो आपके सांस लेने की जो आवाज है वो माइक में अक्सर का आती है।
0: आती है ऐसे ऐसे आती
1: है, लेकिन इस तरह नहीं बात है, लेकिन पर्सनली इट्स नॉट, मुझे लगता है कि इट्स नॉट अ बिग डील। जब इवन आरजे जैमजम शो कर रहे होते हैं तो मुझे लगता है कि वो शो के दौरान ना बॉल पेन को खोलना बंद करना करते रहते हैं, तो उसकी आवाज बहुत क्लियरली आती है, पता चलता है कि वो कर रहे हैं।
0: नहीं ऐसे ही है, मैं जो है ना गेन कम करता हूँ माइक का, मेरा ख्याल है माइक का गेन ज्यादा होने की वजह से ना मेरे सांसों की आवाज भी आने लग गई। ओह माय गॉड दिस इज वेरी रोमांटिकली डेंजरस। एनीवेज थैंक यू वेरी मच फॉर योर कॉल जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़ी। ओके जी हम ना थी, फाइन फाइन, देखा मैं पहले कह रहा था लड़कियों को बड़े अजीब अजीब रंग पसंद होते हैं, इनकी डेफिनेशन मेल्स के पास नहीं होती। एनीवेज लेट्स टॉक अबाउट द ट्रेट्स, पर्सनैलिटी पे जो इम्पैक्ट आ रहा होता है, हम बात करते हैं ग्रे कलर के बारे में। और मेन ट्रेट्स जो होते हैं ना जी, मेनली जो देखा जाता है ग्रे कलर पसंद करने वालों में, मच्योर किस्म के प्रैक्टिकल होते हैं, बड़े ठंडे मिजाज के, इंडिपेंडेंट एनालिटिकल अप्रोच के साथ, रिजर्व्ड एंड रिस्पॉन्सिबल किस्म के लोग होते हैं ये लोग। और इनकी स्ट्रॉन्ग क्वालिटी जो होती है ना जी, ये लोग जज्बात की बजाय फैक्ट और रियलिटी को बहुत ज़्यादा अहमियत देते हैं, और इमोशनली काफ़ी कंट्रोल होते हैं, मतलब हर बात पे फौरन रिएक्शन नहीं देते, खुद को कंट्रोल करते हैं, एंड इंडिपेंडेंट अपनी ज़िंदगी के फैसलों में दूसरों पर ज़्यादा डिपेंड करना पसंद नहीं करते, इंडिपेंडेंट होना पसंद करते हैं, और मैच्योर होते हैं, मसाइल को अननेसेसरी ड्रामा क्रिएट करके नहीं शॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं अच्छे तरीके से हल किया जाए, और लोगों के सिचुएशन, उनकी ऑब्जर्वेशन और उनके एक्शन बहुत डीपली ऑब्जर्व करते हैं लोगों के बारे में, और रिलायबल होते हैं, अगर कमिटमेंट कर लेते हैं तो पूरी करते हैं। बस ये पढ़ने के बाद जो है ना मैंने सोच लिया आज से आई लव ग्रे कलर, ओके ओनली आई गोना यू नो अप्रिशिएट द ग्रे कलर, गोना टेक अनदर कॉल जी। अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम सलाम,
0: कौन है हमारे साथ?
1: मैं बिस्मा लाहौर से।
0: कैसी हैं आप, खैरियत से हैं?
1: मैं ठीक हूँ
0: जी। बिस्मा
1: क्या बात करनी है?
0: कोई भी बात कर लें।
1: अच्छा वो साजिदा कह रही थी कि अस्सलाम वालेकुम, तो उसका जवाब भी वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया आपने मुझे सलाम कहा।
0: अच्छा आपस में खतों की ताबत कर रहे हैं आप लोग, मैं चला जाऊं?
1: नहीं नहीं आप रुके। नहीं वो ना मुझे सलाम कह रही थी तो उस वजह से मैंने कहा आपको वालेकुम सलाम कह दूं।
0: ठीक,
1: और आप कैसे हैं?
0: मैं ठीक हूँ जी, मेहरबानी, बहुत शुक्रिया।
1: आप कोई रिक्वेस्ट प्ले कर सकते हैं हमारी? क्या
0: नहीं?
1: अच्छा ठीक है,
0: अच्छा गाना बताएं चल, और लिस्ट में अगर हुआ तो चला देंगे, बताएं।
1: वो गाना है खामोश चेहरा आँखों पे पहरा।
0: पाकिस्तानी है इंडियन है?
1: क्या
0: पाकिस्तानी है?
1: पता नहीं, मैंने ये एफएम रेडियो 101 पे सुना था, बट थोड़ा सा उन्होंने प्ले किया उसके बाद बंद कर दिया और मुझे अच्छा लगा था। अच्छा ये इतना अच्छा गाना था।
0: आपको कलर कौन सा पसंद है?
1: मुझे रेड कलर।
0: किसी के ऊपर पहना हुआ?
1: किसी के ऊपर क्या मतलब?
0: किसी को
1: अच्छा, हाँ। जैसे किसी फ्रेंड ने पहना हो या हाँ, मम्मा
0: मतलब
1: ने
0: किसी
1: पापा
0: को
1: ने
0: किसी ने भी हाँ। What do you think? चले इसको और रिफ्रेश करते हैं। मेल पे कौन सा कलर ज्यादा अच्छा लगता है और फीमेल पे कौन सा अच्छा लगता
1: है? जिस पे जो सूट करे वो ही।
0: मोहम्मद अवैस है जी, अस्सलाम वालेकुम आरजे डॉक्स। वालेकुम सलाम गुलाब, वेरी नाइस शो। सजाद अली लाडलावा जी, वाह पोइट्री, बहुत शुक्रिया जी। ख्याल यार की रंगीनियों में गुम होकर जमाल यार की आजमत निखार दी हमने, उसने उसे न जीत सकेगा गम गमे जमाना अब जो कायनात तेरे दर पे हार दी हमने। आहा, क्या बात है। तुम कभी शाम के कुछ बात के मंजर देखो, सुर्ख आंखों के किनारे पे समंदर देखो, कितने गमगीन है बाहर से ये हंसने वाले वक्त, पाओ तो कभी झांक के अंदर देखो। अच्छा, वेरी नाइस, वेरी नाइस, काफी दर्द भरा। अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं आप?
0: अल्हम्दुलिल्लाह। कौन है जी हमारे साथ?
2: मोइन जट फ्रॉम कोटरी आजाद कश्मीर।
0: कैसे हैं मोइन, आप खैरियत से?
2: अल्हम्दुलिल्लाह लगा एहसान है। आप सुनाएं कैसे हैं, तबीयत कैसी है
0: जी? परफेक्टली फाइन, थैंक यू वेरी मच।
2: माशाल्लाह आपका शो दो तीन मरतबा सुना है, बड़ी अच्छी मजाक कर लेते हैं आप।
0: हाँ, अपना मजाक उड़ा लेता हूँ ना इसलिए।
2: नहीं, समझने वाले तो सुनने वाले हैं वो समझ लेते हैं, बट कॉलर नहीं समझ पाते।
0: अच्छा ठीक है, ठीक है मोइन भाई।
2: तो बाकी है कि कलर के बारे में बात करूंगा, मुझे वाइट कलर बहुत पसंद है।
0: क्या वजह है?
2: वजह यह है कि बस मेरे नबी को पसंद है और मुझे भी पसंद है, वजह सिंपल इज दैट।
0: बहुत अच्छा वाइट कलर, उन्हें तो काला भी पसंद था।
2: हाँ, लेकिन मैं दो चूज करता हूँ ना, एक वाइट और ब्लैक।
0: okay.
2: मतलब काला काला मुझे एक, वो कहते हैं ना इन नमल अमाल बिन नियत, किसी भी अमल की जो नियत होती है वो मैटर करती है। तो ब्लैक में मतलब के खाना काबा की नस्बत से भी कर लें या हजरे असवद की नस्बत से भी कर लें।
0: रसूल कायनात की चादर का रंग भी काला था
2: जी,
0: रसूल कायनात की चादर का रंग भी काला था
2: जी, वो भी नस्बत कर लें। हाँ, काली कमली का भी जिक्र कर लें।
0: हाँ, इसीलिए मैंने कहा आपकी नस्बतें जरा पसंद करने की बढ़ जाए
2: जी। जी तो यह इसे बात है, और एक दो अशआर सुनाना चाहता हूँ।
0: सुनाइए, बिल्कुल सुनाइए। आज आप लोगों के लिए प्रोग्राम, मैंने कोई टॉपिक रखा ही नहीं, इसलिए मैंने कहा आप बात करें सब।
2: जी जी, थैंक यू
0: जी,
2: थैंक यू। तुलू शम्सो कमर से पहले मैं तुझ पे आका दुरूद भेजूं।
0: आहा, तुलू शम्सो कमर से पहले,
2: हर एक शाम और सहर से पहले मैं तुझ पे आका दुरूद भेजूं।
0: बहुत अच्छा।
2: मैं घर से निकलूं तो लबों पे हो नाम तेरा, पलट के घर से पहले मैं तुझ पे आका दुरूद भेजूं।
0: बहुत अच्छा।
2: हुसूल और इल्म और हुनर से पहले मैं तुझ पे आका दुरूद भेजूं।
0: वेरी नाइस, वेरी नाइस।
2: और है कि खुदा की भेजी किताब तू है, मेरा तो सारे का सारा निसाब तू है।
0: वाह वाह, वाह वाह।
2: तुलू शम्सो कमर से पहले मैं तुझ पे आका दुरूद भेजूं, हर एक शाम और सहर से पहले मैं तुझ पे आका दुरूद
0: भेजूं। क्या बात है जी, बहुत आला जी,
2: थैंक यू। ये पूरी थी पोएट्री, लेकिन अभी मुझे थोड़ी सी याद थी जो मैंने आपको सुनाई है। बाकी आपको भी रबीउल अव्वल की बहुत बहुत मुबारक हो।
0: बहुत शुक्रिया।
2: और लास्ट में एक शेर है कि जुल्फ देखी है कि नजरों में गठा देखी है
0: जी,
2: زلف دیکھی ہے کہ نظروں میں گٹا دیکھی ہے، ارے وہ لٹ گیا جس نے محمد عربی کی ادا دیکھی ہے.
0: کیا بات ہے، چھا گئے آپ، چھا گئے. تھینک یو ویری مچ فار یور
2: کال. تھینک یو بھائی، آپ سے بات کہہ کے بہت اچھا،
0: بہت اچھا. موہن بھائی ایک اور بتا کے تو جائے نا. ہیلو یار، بستی کا چلو کوئی گال نہیں. اچھا جی، 447 کے میسج پڑھتے ہیں. مہر ہیں، السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ کل جو سانگ چلایا تھا اس کے لیے تھینک یو. وہ صرف ایک سانگ نہیں تھا، میری فیلنگس تھیں آپ کے لیے، اس لیے ڈیڈیکیٹ کیا تھا. ہائے اللہ، میرا دوپٹہ گھوم گیا، نہیں تو میں پہن لیتا یار ابھی. مہر فاطمہ، تھینک یو ویری مچ. کہتی ہیں سر آپ کو سنتے ہوئے مجھے آج پورے 6 ماہ 1 ہفتہ اور 15 منٹ ہو گئے. اللہ، یہ آپ نے کتنے بجے میسج کیا؟ یہ 10:40 آپ نے 40 منٹ پہ کیا، اور ابھی اتنے ہی منٹ اور شامل کر لیں تو میرا خیال ہے تھوڑا سا زیادہ ٹائم ہو گیا نا، ہے نا؟ کیا بات. اور آپ کی تو جیسے عادت ہی ہو گئی ہے، اور تب سے ہی لاہور کا نام سنتے ہی بلش کرتی ہوں. اس سے پہلے کسی سٹی، ایون اپنے ملتان کے، اپنے ملتان کے لیے بھی ایسے فیل نہیں ہوا. اب میں بلش کروں؟ تھینک یو ویری مچ فاطمہ، تھینک یو سو مچ. ادریس صاحب آئے ہیں، السلام کیا. وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں، تھینک یو ویری مچ. اور سید محمد علی ضیاء آئے ہیں، بھائی آپ کی شرٹس کی کلیکشن بڑی نرالی ہے. اچھا، ہمیں تو لگتا ہے بڑی عام سی ہے. تھینک یو ویری مچ جی. اور کیسے ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں. آج بھی کافی لیٹ ہو گیا، ہماری لائٹ کافی دیر سے آف تھی. کوئی بات نہیں، نو وریز. اوکے مہر، تھینک یو ویری مچ جی، آپ کا میسج ملا ہمیں. مہر فاطمہ کا ایک اور میسج آیا ہوا ہے. اچھا، سلام محبت جی، یہ کسی اور کا میسج ہے. کیسے ہیں آپ میرا سونا شہزادہ؟ خوبصورت، بلکہ بہت ہی خوبصورت آپ. اور یہ بات کون کہتا ہے کہ تعریف بس لڑکیوں کی ہوتی ہے؟ آپ جتنے پیارے ہیں نا، میرے پاس تو الفاظ نہیں. اسما کی جانم. اللہ یار، یہ سٹریٹ ہے، بالکل سیدھا ہے. آپ میری دعاؤں کا محور ہے، میری ساری محبت ہے آپ کے لیے، آپ کی دیوانی. تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ اسما جی، بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ. اب میں بلش کرنا شروع کر دوں گا. ایکچولی میں چاہوں بھی تو بلش نہیں کر سکتا، بلش چٹے لوگ کر دینے، کالے لوگ نہیں کر دے، میرا رنگ نہیں ہے ایسا، میں کر نہیں سکتا. مہر فاطمہ پھر سے، سر اب تو بس دل کرتا ہے کہ لاہور اڑ کے آ جاؤں، دل و دماغ میں بس آپ ہی رہتے ہیں.

अच्छा ठीक है. I'm supposed to react like okay. इसलिए ये दिल लाहौर का नाम सुनते ही धड़कने लग जाता है. वो जो आसमा साहिबा है ना, उनसे भी ज्यादा है मुझे आपसे. लेकिन उन्होंने मुझसे पहले ही आपको ये सब कहना शुरू कर दिया. मैंने भी सोचा था, लेकिन आसमा जी की हिम्मत के बाद मैंने सोच लिया कि मैं भी आपको ये सब बोल देती हूँ. आप तो बोल देती हैं, सुनने वाले पे क्या गुजरती है, ये पढ़ने वाले पे क्या गुजरती है, कम ऑन. उसका भी सोचा गए. ओके दिस इज अली. ओके अली, हाउ आर यू? माय फेवरेट कलर इज डार्क ब्लैक एंड डार्क ब्लू. ब्रो ब्लैक ब्लैक होता है, डार्क ब्लैक की मुझे कोई डेफिनेशन नहीं समझ आई. मतलब आप ब्लैक को जितना भी ब्लैक करेंगे, डार्क करने की कोशिश करेंगे, उन्हें रहना काला ही है. डार्क ब्लू में आप चले उसे डार्क करते जाते हैं तो वो नेवी का टच आना शुरू हो जाता है, नियर टू ब्लैक पहुंच जाता है. से समथिंग अबाउट इट. ओके आई डेफिनेटली से समथिंग अबाउट इट. अच्छा सजाद अली कह रहे हैं अपने सदका उतारा करें. मैं तो हूं ना, आप ही सदका हो जाना. उबैदुर रहमान ऑफ लाहौर, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम सर. शान सहाबा पे कुछ रोशनी डालें, अल्लाह पाक आपको जजा दे. देखें जी, अल्लाह के रसूल की जिसने मानी उसका और उसके मकाम से बढ़ के क्या ही मकाम होगा. और अल्लाह के रसूल की इन अदाओं के बारे में कितना कुछ कहा जाता है, और उनके अक्वाल के बारे में भी कुरान में इरशाद ये हुआ कि जो अल्लाह का रसूल दे वो ले लो, जिससे वो रोके रुक जाओ. ये आयत में बड़ी वजाहत के साथ कहा गया. और जिन्होंने अल्लाह के रसूल का ज़माना पाया, उनका दीदार किया, उनके हाथ पे बैत की, इस्लाम को कबूल किया, और जिससे रोका उससे रुक गए, जिसको इख्तियार करने का कहा उसको इख्तियार किया, तो उनके लिए इससे बड़ा और दर्जा क्या होगा कि उनका जिक्र आता है तो हम उनके नाम के साथ हजरत लगाते हैं, एहतराम से नाम लेते हैं, और हमारे लिए अंदर से मोहब्बतें निकल आती हैं, बेशुमार अकीदतें निकल आती हैं. और खालिक कायनात ने फिर उनसे अजर अजीम का वादा कर रखा है, और रसूल कायनात फिर हौज़े कौसर पे उनको अपने हाथों से पानी पिलाएंगे. इससे बड़ी और क्या ही शान होगी. लेकिन वो जिन्होंने अल्लाह के रसूल की मानी. सलाम मोहब्बत चन जी, जितना लेट आप आते हैं वो एक्स्ट्रा टाइम दिया करें एफएम पे, जल्दी मत जाया करें. दीवानी आपकी है, कौन है? अच्छा ये वही है. अच्छा ठीक है. मेयर हैं सर, आपके शो की आवाज़ नहीं आ रही, इंटरनेट पे सुन लें. मोहम्मद अनीस है पाकिस्तान आर्मी से. मियाँ चन्नू से, आपका प्रोग्राम बहुत ज़बरदस्त है, आपको और आपकी तमाम टीम को सलाम. मिलाद मुस्तफ़ा मुबारक, आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो. मुजीबुर रहमान है और फ्रॉम शेखुपुरा. माई सन डॉक्टर मुनीबुर रहमान, डॉक्टर अबू हुरैरा एंड ग़ुलाम ज़हरा, आप सबको जी हमारी तरफ से बहुत सारा प्यार है और बहुत सारा सलाम है जी. थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग, यू गाइस आर लिसनिंग, थैंक यू वेरी मच. अगला एक गाना मैं लगाने लगाऊँ जो मुझे कहा गया था वो लगाने के लिए, ये मैंने भी एक दो दफ़ा सुना था. चलो कोई गाल नहीं, नईम हज़ारवी साहब हैं एंड मैं भी प्ले करके देखता हूँ, काफ़ी ज़्यादा इसके व्यूज़ भी हैं. 89 million, 15 साल पहले आया. लेट्स लिसन टू दिस ट्रैक, किस तरह का है. चलो कोई गाल नहीं, चलो देखते हैं जिस तरह का भी. लेट्स एंजॉय द नंबर. वक्त हो चुका है 11:40, आई विल कैच यू बैक आफ्टर दिस ट्रैक. वापस आके ग्रे पे बात करते हैं, कॉल्स लेते हैं. डोंट गो.

ऑलराइट जी, वेलकम बैक। वक्त हो चुका है 11:43 और आज है जी 20 अगस्त 2026 का सेना एफएम 101 रेडियो पाकिस्तान के लाहौर स्टूडियो से आप सुन रहे हैं नाइट थेरेपी विद आरजे डॉक्स, जिसमें आपका मेरे साथ होता है बुध और जुमेरात की शब 10 से 12 बजे तक। और वक्त हो चुका है 11:44 और 20 अगस्त 2026 का सेन है एंड आई एम टॉकिंग अबाउट द ग्रे कलर। एंड उसके बाद मैं यहाँ पे थोड़ा सा ऐड करूँगा, मेरे से अली ने पूछा था ब्लैक और ब्लू के बारे में, डेफिनेटली आई गोना ऐड समथिंग अबाउट इट, बट लेट मी कंप्लीट समथिंग अबाउट ग्रे कलर। आई टोल्ड यू अबाउट द वीक स्ट्रेंथ, नाउ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द वीकनेस ऑफ ग्रे कलर। ग्रे की कमजोरियों के बारे में बात करते हैं। जो लोग ग्रे को पसंद करते हैं उनके लिए बताता जाऊँ कि फीलिंग को एक्सप्रेस नहीं करते, अक्सर ये प्रॉब्लम आती है, इनकी वीकनेस होती है और इमोशनली डिस्टेंट रहते हैं, यानी कि अंदर की बातें आसानी से ये नहीं बताते किसी को, जिसकी वजह से अक्सर मामला अजीब हो जाते हैं, ओवरथिंकिंग करते हैं और कभी कभी इनडिसाइसिव हो जाते हैं चीज़ों के बारे में। सोशल विड्रॉल यानी अकेला रहना पसंद करते हैं, हर चीज़ को एनालाइज करते हैं, दूसरों को अपने करीब आने नहीं देते। यार मुस्तफ़ा जाहिद का मैशअप है साथ BGM पे, मैंने सेट कर लिया। I love this song. क्या मस्त गाता है यार ये बंदा। ग्रे कलर जो पसंद करते हैं ना जी, उन्हें क्या चीजें पसंद होती हैं, लेट मी टेल यू, उन्हें सुकून बहुत पसंद है, उन्हें प्राइवेसी बहुत पसंद है और कम से कम चीजों के अंदर भी खुश रहने का आर्ट आता है उन्हें। और इसके अलावा क्लीन स्पेस बिला वजह का हुजम नहीं पसंद, साफ सुथरी जगह हो फिजा, आप क्या किए जा रही क्या भेज। और इसके अलावा उन्हें ऑर्डर में रखी हुई चीज़ें पसंद होती हैं, चीज़ें ऑर्डर में पड़ी होनी चाहिए। इंटेलेक्चुअल कन्वर्सेशन उनको बहुत ज़्यादा अपील कर रही होती है, क्वालिटी ओवर क्वांटिटी प्रेफर करते हैं, सिंपल फैशन करते हैं, बड़ा सिंपल सिंपल रहना पसंद कर रहे होते हैं, मैच्योर पीपल उन्हें पसंद हैं। और क्या नहीं पसंद, इन्हें मेलो किस्म का ड्रामा नहीं पसंद, ऊंचा बोलने वाले लाउड बिहेवियर नहीं पसंद, फेक पर्सनैलिटीज इनको पसंद नहीं आती और इमोशनल मैनिपुलेटर यानी कि जो आपको नहीं पसंद आते, और अननेसेसरी किस्म की अटेंशन यानी आपको सेंटर ऑफ अटेंशन बिला वजह आपको बनाया जाए ना, तो वो इसे अनकंफर्टेबल होते हैं। यारा ये वाला नहीं, हम दूसरे वाला चला देते हैं, थोड़ा सा और चलाते हैं जरा फिट फील के साथ, हैं जी। और इसके अलावा अगर हम बात करें ग्रे कलर की कंपैटिबिलिटी के बारे में बात करते हैं, ग्रे कलर सिल्वर कलर के साथ इनकी कंपैटिबिलिटी 91% है। और इसकी वजह क्या है, इसकी वजह ये होती है दोनों का इंटेलेक्ट लेवल मैच करता है, मैच्योरिटी मैच करती है, लेकिन पॉसिबल इशू क्या आ सकते हैं, इमोशनल जो एक डिस्टेंस है ना वो आ सकता है। और रहमान अनवर साहब अगर सुन रहे हैं अंदर तशरीफ ले आएंगे मेरे साथ ज़रा थोड़ी देर। ब्लू कलर के साथ ग्रे पसंद करने वालों को, ब्लू कलर जिनको पसंद है उनके साथ कंपैटिबिलिटी इनकी 88% है। और इन दोनों की क्योंकि अंडरस्टैंडिंग होती है, बड़े काम एंड कूल अंडरस्टैंडिंग कपल बन सकता है, लेकिन दोनों रिजर्व होते हैं, उसकी वजह से इशू आ सकता है। ब्राउन कलर लवर के साथ यार रहमान अनवर साहब को अगर कहें थोड़ी देर के लिए अंदर तशरीफ ले, शक्ल दिखा दें, शक्ल मुबारक। ब्राउन के साथ कंपैटिबिलिटी 87% इनकी बनती है और उसकी वजह स्टेबिलिटी और प्रैक्टिकलिटी होती है, वही आगे इशू फिर वही है कि यार दोनों में जो है ना सोशल अपना इमोशनल डिस्टेंस। ब्लैक के साथ भी 86, ब्राउन के साथ कंपैटिबिलिटी 87% इनकी बनती है और उसकी वजह स्टेबिलिटी और प्रैक्टिकलिटी होती है, वही आगे इशू फिर वही है कि यार दोनों में जो

0: लेकिन फिर वही मसला, इमोशंस, एमोशन एंड यस, येलो के साथ इनके बहुत कम है कंपैटिबिलिटी की रेशियो, बिल्कुल कम बनने के चांसेस हैं। पर्पल के साथ अच्छी, ग्रीन के साथ 83% है। गोना टेक अ कॉल, अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो हेलो
1: हेलो
0: अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम जनाब अशरफ साहब, मैं मोहम्मद सलमान भट्ट सुन्नाबाद लाहौर से बोल रहा हूं।
0: साहब आप खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं
1: अल्लाह का शुक्र। मेरा भी दिल करता है मैं शमीमा भी बन जाऊं, मेरी भी आवाज आपको पता चल जाया करे।
0: भट्ट साहब बार बार कॉल आएगी, पता चल जाएगा।
1: अच्छा और आप ठीक हैं? मैंने कभी ब्लैक कलर बड़ा पहना हुआ, ब्लैक और लाइट ब्लू बहुत पहना है, अलग मेहरबानी से।
0: अच्छा ब्लैक के बारे में अगर बात करें तो क्या बात करूँ, क्या बताऊँ आपको? ब्लैक कलर पसंद करने वालों के बारे में कहा जाता है काफी संजीदा मिजाज लोग होते हैं और इन्हें अपनी जो है ना अथॉरिटी, यानी जो मैंने कह दिया है ना बस ऐसे ही करो।
1: वो जवानी में था ना, अब तो हर बात माननी पड़ती है। वो
0: हुन तूने हुन कलर भी चिट्टा पसंद होएगा ना,
1: हुन जेड़ा तुसें पाली लगी
0: क्या है
1: कभी ये भी क्या प्रेस कर दियो भाजी
0: है यानी लोग मेरे बारे में ज्यादा ना जान सके, और उन्हें ताकत हासिल करने का भी बड़ा शौक होता है।
1: ताकत तो रही है सारी जिंदगी अल्लाह का शुक्र है। 1000 बंदा भी आगे बैठा होता था वो आंखों से ही काबू कर लेते थे, अल्लाह की मेहरबानी।
0: क्या बात है, हुन तानू इको बंदी लब्बी उन्होंने काबू कर लिया।
1: हां हुन भाई हुन हर गल पूछ पूछ। और आप ठीक हैं?
0: बड़ी मेहरबानी सर, थैंक यू वेरी मच।
1: ये ठीक हुई है?
0: हां हां,
1: मैंने आपकी दुआ की थी कल थकावट ना, आज मुझे थकावट है। बार अल्लाह खैर करे,
0: अल्लाह आपको सेहत वाली जिंदगी दे।
1: अच्छा सर, मीठा मीठा है मेरे मोहम्मद का नाम, उनसे लाखों करोड़ों दरूद और सलाम। अल्लाह हमें प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पे अमल करने की तौफीक दे।
0: आमीन आमीन, थैंक यू वेरी मच।
1: अस्सलाम वालेकुम, तमाम सुनने वालों को मोहब्बत और प्यार।
0: वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू वेरी मच। बट साहब थे जी, थैंक यू वेरी मच फॉर दिस। अगर आप ब्लू के बारे में भी पूछा था, ब्लू के बारे में भी बताता जाता हूँ। इनकी स्ट्रॉन्ग क्वालिटी क्या है, लॉयल होते हैं, रिलायबल होते हैं, अच्छे लिसनर होते हैं, सब्र इनमें बड़ा अच्छा होता है, प्रोफेशनल होते हैं, इमोशनल स्टेबिलिटी इनमें अच्छी होती है, और डीप थिंकर होते हैं चीज़ों के बारे में, जो है ना बड़ा तसल्ली से इन डेप्थ जाके चीज़ों को सोचते हैं। और अगर इनकी वीकनेस के बारे में बात करें तो इमोशनली सप्रेस करते हैं, अपने इमोशंस को सप्रेस करते हैं, यानी दबाते हैं जज्बात को, और ट्रस्ट बनाने में वक्त लेते हैं, परफेक्शन इन्हें चाहिए होती है चीज़ों में, और चेंज जल्दी अडॉप्ट नहीं करते। ये एक बहुत बड़ा मसला है। हाँ रहमान साहब की जब भी नज़र आ गई आपको, सजाद अली लाडला ने मैसेज किया था, कहते हैं ब्रदर लिसनर और हम जितना आपको चाहते हैं, उसमें पोइट्री आपके लिए सर, थैंक यू वेरी मच। ना पयाम चाहते हैं ना कलाम चाहते हैं, मेरी रात के अंधेरे तेरा नाम चाहते हैं, तेरी याद तेरी आहट तेरा चेहरा तेरा वादा, कोई शम्मा हो मगर हम सरे शाम चाहते हैं। क्या बात है, थैंक यू जी। मैंने टेक अनदर कॉल, बल्कि कॉल्स ही कॉल्स लेते हैं, एक एक मिनट की कॉल लेते हैं जितनी ली जाए, लेकिन यार आप बंद नहीं ना करते फोन। अस्सलाम वालेकुम।
2: अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम सलाम जी,
2: इस्लामाबाद।
0: कैसी हैं मैडम आप? खैरियत से हैं? मिजाज अच्छे हैं
2: अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह
0: अल्लाह
2: का शुक्र है।
0: हाँ जी,
2: बहुत शो कह रहे हैं आप।
0: अच्छा बहुत शुक्रिया, आपको पसंद आया, कुछ कहना चाहेंगे? हेलो
2: क्या पूछने?
0: जी जी कुछ कुछ कुछ कुछ भी, कुछ भी एनीथिंग
2: जी,
0: कुछ भी कहिए, कुछ कहिए।
2: मैं एक थोड़ी सी नात सुना सकती हूँ?
0: जी सुनाइए। आए ना रहमान, इधर आए प्लीज, माइक पे आए।

0: रात का टाइम हो ना, रात का टाइम
1: yes.
0: और आप किसी पीसफुल जगह पे अकेले बैठे हो, और खास तौर पे उन लम्हात में जब आपके अंदर कोई तकलीफ हल्की हल्की सी, इसके गाने सुने आपको लगेगा आप महज तकलीफ में ही रहते हैं।
1: नहीं, मुझे लगता है उसमें थोड़ी थोड़ी
0: यार कमाल
1: तकलीफ में भी एक अच्छा, हाँ ठीक है,
0: रोमांस भी ऐड करता गाने में।
1: हाँ, मैंने देखा है,
0: भी है बहुत। गाना देखना नहीं, सुनना है। कॉल ले रहे हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी।
2: अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम सलाम, क्या हाल है बाजी, ठीक हो?
2: फिलहाल।
0: अच्छा, फिलहाल ठीक हो?
2: हाँ जी, उससे समझ नहीं आ रही है, कॉलम बहुत परेशानी पे हुई थी ना।
0: हाँ, कॉलर परेशान सन बाजी, नीला दी कॉल नहीं आ रही।
2: अच्छा।
0: हाँ, बहुत परेशान सन।
2: वैसे आपस की बात है, मैंने को 20 मिनट पहले सुनना शुरू किया।
0: आप नाम बताएं अपना।
2: अनिला बात कर रही हूँ।
0: कहाँ से बात कर रही?
2: लाहौर से।
0: अच्छा अच्छा अच्छा जी। मैडम क्या कहना चाहेंगी?
2: जी यही कि अभी जब से मैं सुन रही हूँ तब से तो अच्छा लग रहा है कि कोई आपने बड़ी अच्छे टॉपिक पे अच्छी बातचीत की है। और रबीउल अव्वल
0: फिर आपने ध्यान से नहीं सुना क्योंकि मैंने तो कोई मौजू नहीं रखा। जी
2: मैं कह रही हूँ कि बातचीत अच्छी हुई है। आप कलर्स के बारे में जो बता रहे थे बड़ा खूबसूरत।
0: नहीं, वो आपने किसी और का शो सुना होगा, मेरा शो नहीं था जी।
2: अच्छा, आप नहीं थे वो?
0: नहीं नहीं, मेरा नहीं था। मेरा तो अभी 10 मिनट हुए शुरू हुआ जी।
2: क्या करें कि बस ध्यान ख्याल में आप ही की आवाज आ रही
1: है। ये तो वायरल चेंज हो जाओ, अच्छी गल है
0: है ना। हूं तारीफ करती है, चलो माफी देती है।
1: ये तो मजा आया, ये तो गल
0: माफी दे दी,
1: ये तो गल दा मजा।
0: क्या याद करेंगे, माफ कर।
2: वरना इन्होंने संजीदगी में लगे रहना था मुझे इधर उधर बोलने।
0: माफ किया, क्या याद।
2: अदाबत, थैंक यू थैंक यू। सुनाए अभी मैं देखी सुन रही थी कि कुछ लोग आके रबीउल अव्वल के उससे भी बात कर रहे थे हवाले से। खूबसूरत महीना, अल्लाह ताला सबके लिए मुबारक करे। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए तो कायनात बनी। और हमारा काम हम दुरूद पढ़ते चले जाएं, पढ़ते चले जाएं।
0: बिल्कुल सही है जी, इसमें कोई दूसरी राय नहीं।
2: दो लाइनें बोल।
0: बिस्मिल्लाह कीजिए
2: जी। Ya Muhammad Mustafa, bas ek nazar, ae Habib-e-Kibriya,

0: है अमानत में खयानत किसी की खातिर,
1: ठीक है,
0: तो मरता है तो हैरत नहीं होती मुझको।
1: लेकिन आपने जो ऑफर पढ़ा है ना, वो ज्यादा अच्छा।
0: अब तेरी याद से बहशत नहीं होती, उन पर नफसाना पड़ो।
1: हाँ ठीक है।
0: Alright जी, this is Azad Dog signing off and yes presenting Mustafa Zahid चंद लम्हात आगे। यार फिल्म अधी कुछ जाते जाते हैं, दो लाइन है, दो से तीन
1: नसर में। कमरे में दो चार दस बीस बत्तियां और होती तो वो भी जला लेता, खिड़कियां और ज्यादा होती तो वो भी खोल लेता। काश किसी तरह छत ही खुल सकती या फिर सीना ही ऐसा होता, जब चाहते खुला आसमान बना लेते।
0: वाह वाह वाह वाह वाह वाह।
1: हर तरफ चराग ही चराग जला लेते, फिर कहीं से किसी सूरज को पकड़ लाते और कहीं दरमियान में गाड़ देते। उदासी की नींद तारीकी, वहशत और बेचैनी की नींद तारीकी, जहां इतनी सारी नींद तारीकियां इकट्ठी हो जाएं, कितना घटा टूप अंधेरा फैल जाता है जो कुछ देर के बाद फैलेगा।
0: चलें जी, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। And I definitely gonna enjoy this track. Milte hain agle budhwar ko raat ko.

0: FM 101, the sound of new millennium. FM 101, the sound of new millennium.
1: सरोर संगीत साजो आवाज आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।

FM 101, The Sound of New Millennium. सुरर संगीत साजो आवाज आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।

तुम्हें अगर उसके होने पर यकीन है तो फिर किसी भी शय के होने की खुशी या ना होने का गम बेमानी है। आइए प्रोग्राम का आगाज करते हैं।

मुझे मालूम है सब कुछ कि वो हर्फे वफा से अजनबी है, वो अपनी जात से हटकर बहुत कम सोचती है, मुझे मालूम है सब कुछ कि वो हर्फे वफा से अजनबी है, वो अपनी जात से हटकर बहुत कम सोचती है, वो जब भी आईना देखे तो बस अपने ही खाल व खद के तेवर देखती है, उसे अपने बदन के जाविये कौसें मुसल्लस मुस्ततीलें बाजुओं की दस्तरस में रक्स करती, ख्वाहिशों की सब उड़ानें कीमती लगती हैं, कीमती लगती हैं सेमो जर के पोशीदा खजानों से, जमीनों आसमानों में रवा रोशन जमानों से, वो लम्हा लम्हा अपने ही तराशीदा कुर्रों में घूमती है, वो बारिश में नहाई धूप के आंगन में खिलती खेलती हस्ती हरी बेलों की शहरक से, वो लम्हा लम्हा अपने ही तराशीदा कुर्रों में घूमती है, वो बारिश में नहाई धूप के आंगन में खिलती खेलती हस्ती हरी बेलों की शहरक से निचड़ती नाचती बूंदों को पीकर झूमती है, उसे अपने सिवा दुनिया की हर सूरत हर एक तस्वीर बेतरतीब लगती है, मुझे मालूम है सब कुछ। मुझे मालूम है सब कुछ कि वो रंगों भरे मंजर धनक के जायके उजली फिजा की खुशबुएं झिलमल शुआएं अपनी बेनाई के हलकों में मुकैद करके अपनी मुस्कुराहट के दरीचे खोलती है, कि वो इकरार के लम्हों में कम कम बोलती है। मुझे मालूम है सब कुछ मगर मालूम ही सब कुछ नहीं है, मुझे मालूम है सब कुछ मगर मालूम ही सब कुछ नहीं है, कि इस मालूम की सरहद की उस जानिब फिशारे आगही का आसमां है, खुद फरामोशी खामोशी की जमी है, जहां जाहिर की आंखों में अभी मादूम है सब कुछ, मुझे मालूम है सब कुछ मगर मालूम ही सब कुछ नहीं है, मगर मालूम ही सब कुछ नहीं है।

बहरहाल अभी तक आप नाइट थेरेपी सुन रहे थे और मेरे और डॉग्स के दरमियान गुफ्तगू आप एंजॉय कर रहे थे। थैंक यू वेरी मच, आप इतनी मोहब्बतें निछावर करते हैं, इतनी बातें हमारी बियर करते हैं और हमें प्यार करते हैं, ये एहसास बहुत नुमाया है, बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू वेरी मच। बहरहाल 1:04 पाकिस्तान का मायारी वक्त और इस प्रोग्राम में हमारा साथ रहा करता है अमूमन 2 तक, और होता इस तरह से है कि 12 से लेकर 1 तक इस प्रोग्राम में हल्की फुल्की गुफ्तगू होती है, बातें होती हैं, और वो बहुत सी बातें हो चुकी हैं, आपने सुनी, आपने एंजॉय की, आपकी कॉल्स के जरिए से हमें एहसास मिला। लेकिन अभी जो वक्त है 1 के बाद अफसाने का वक्त हुआ करता, तो मैं अफसाना शामिल करने जा रहा हूँ, लेकिन एक ट्रैक शामिल करते हैं। और मैंने ये सुना और मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा, सहर गुल खान की खूबसूरत आवाज, बहुत बहुत अच्छा लगा मुझे, इसको एंजॉय कीजिएगा। मैं तब तक थोड़ा सा प्रिपेयर होता हूँ अफसाने के लिए, थोड़ा सा मेंटली भी अपने आप को स्टेबल करना होता है, जब आप बहुत सी चीजों को बिखेर चुके हों, फिजा में मुअल्लिक हो जाएं, जैसे स्पेस के अंदर टाइम ट्रैवल नहीं करता, स्पेस के अंदर टाइम अलग तरीके से गुजरता है। कहीं पे बहुत तेजी से गुजरता है, कहीं पे बहुत आहिस्ता हो जाता है, एक पल कई सालों का भी हो सकता है, हजारों सालों का भी हो सकता है, ये तो फिर बहुत से लोग आप में से जानते हैं। वो जो सफर था सिदरतुल मुंतहा की जानब, और वापस जब आए तो उसी तरह से था सब कुछ, जहां वजू किया था वो जगह गीली थी, और जिस बिस्तर से उठ के गए थे अभी सिलवटें उसी तरह से थी, और गर्म था बिस्तर। वक्त का थोड़ा सा डिफरेंट है स्पेस के अंदर ट्रैवल। बहरहाल ये मुकम्मल सुनेंगे, और इसके बाद जब वापस आएंगे तो फिर बिल्कुल अलग अंदाज में अफसाना शामिल करेंगे। आप में से बहुत से लोग अफसाना पसंद करते हैं, सो उन सब के लिए।

101, the sound of new millennium. सरल संगीत, साजो आवाज, आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।

101, the sound of new millennium. सरोर संगीत साजो आवाज आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।

एक दिन काशी की समत जाने वाले बादल न जाने इधर कैसे चले आए कि सारा शहर अंधियारे की लपेट में आ गया और मूसलाधार बारिश होने लगी। हम चारों दोस्त हॉस्टल के एक कमरे में स्टूव लैंप के इर्द गिर्द केतली से उठती हुई भाप में अपने सिगरेटों का दबीज धुआं मिला मिला कर नजारा कर रहे थे। सख्त सर्दी में ऐसी शदीद बारिश, खिड़की के शीशों पर पता नहीं कौन से गीत बजा रही थी और दरीचों के झनझनाते हुए पट मालूम नहीं क्या ताल दे रहे थे। हमें तो इतना याद है कि बरखा की मेंढक जैसी ठंडी रानी बार बार हमारे मुंह चूम कर खुनकी हासिल करने के लिए किसी चोर दरवाजे से बाहर निकल जाती थी और हमें यूं महसूस होने लगता था जैसे हम किसी बेपैंदे की कश्ती में क्रिसमस कार्डों वाली नीम बर्फीली झीलें तेजी से तय कर रहे हों। जब हॉस्टल का सुपरिटेंडेंट हमारे कमरे के दरवाजे से कान लगाकर खड़ा हो गया तो हामिद ने कहा, तुमने मेरा जो कारनामा सुनने के लिए मुझे यहां चाय की दावत दी है वो अपनी नौयत का बिल्कुल अनोखा इशार है जो मैं एक इफ्फत माब लड़की की खातिर कर सका। शायद तुम में उसे समझने की सलाहियत ना हो लेकिन उसकी बर्तरी के तुम यकीनन कायल हो जाओगे। ये उन दिनों की बात है जब मैं और मेरा एक साथी एक बावर्ची के साथ कृष्ण नगर के एक ऐसे मकान में रहते थे जिसके पड़ोस में कुंभा आबाद था। हम में बावर्ची के सिवा किसी ने भी एड़ियां उठाकर दीवार की उस पार झांकने की कोशिश नहीं की। इस पर भी वो लोग हमें शरीफ ना समझते थे और सलाम का जवाब बड़ी तलखी से दिया करते थे। खजस्ता बड़ी बड़ी आंखों वाली सांवले रंग की एक ऐसी लड़की थी जिसके सैंडल की चूबी एड़ियां बाहर से काफी घिसी हुई थी और जब वो चलते हुए कदम उठाती तो दूसरे पांव की एड़ी जिस्म के बोझ से पीछे को फैल जाती और जब वो उस कदम को उठाती तो वही चूबी एड़ी एक झटके से आगे बढ़ती। इससे तुम्हें उसके जिस्म का बखूबी अंदाजा हो गया होगा। इसके सिवा मैं और कुछ नहीं कहना चाहता। बहरहाल खजस्ता का बाप पता नहीं किस दफ्तर में मुलाजिम था मगर उसकी माँ दिल के आरजा की पुरानी बीमार थी और एक ऐसी हाकिम थी जो हर घरेलू काम की फाइल पर फौरी की चिट लगा दिया करती थी। हैदराबाद सिंध से खजस्ता की फूफी सिर्फ बात पक्की करने यहां आई थी और बहुत दिनों से यहीं रह रही थी। एक दिन दोपहर को उन्होंने जहांगीर के मकबरे की सैर का प्रोग्राम मुरतब किया जो मैं अपनी छत पर से बगैर एड़ियां उठाए सुन लिया। खजस्ता से मेरी मुलाकात बस यूं ही सरसरी थी। मैं अपने छत पर आने का ऐलान शेली के अशार से किया करता और वो अपनी छत पर आकर जोर से पुकारती, सारे कपड़े उतार लाऊं अम्मी, और हमारी मुलाकात हो जाती। बाज़ोकात ऐसा भी होता था कि अलगनी पर डाला हुआ उनका कोई रुमाल सूख कर उड़ता हुआ हमारे छत पर आ जाता और मैं उसकी आमद की खबर पाकर रुमाल की गेंद अपने छत से उनके यहाँ फेंक दिया करता और कहता, आपका रुमाल है, उड़कर हमारे यहाँ पहुँच गया था। लेकिन उसके जवाब में सिर्फ शुक्रिया का एक लफ्ज़ वसूल होता। मेरे साथी को दरीना जुकाम की शिकायत थी, वो मेरे इस तरह रुमाल लौटाने पर बहुत बेचैन होता और अक्सर एक ही किस्सा सुनाया करता था कि किस तरह उसने एक लड़की को अगवा करने का मंसूबा बांधा और उसे इस इरादे से बेखबर करके उसकी इजाजत हासिल की और फिर जब वक्त मुकर्रर आ पहुंचा और उस लड़की ने डेवड़ी का दरवाजा रात भर खुला रखा तो वो दबे पांव उनके घर में दाखिल हुआ और टटोलते टटोलते उनकी एक असील मुर्गी अगवा करके ले गया जिसे उसने लौंग और जायफल का भुगार देकर सुबह शाम दो वक्त ज़ियाफ़त उड़ाई। लेकिन मैं तो हमेशा रुमाल वापस कर दिया करता था क्योंकि रुमाल ना तो बिगाड़ा जा सकता है और ना मुझे जुकाम हुआ है। जिस जुमे को उन्हें जहांगीर के मकबरे की सैर को जाना था उस दिन सुबह ही सुबह उनके यहां पकवान पकने लगे।
उन पकवानों में सबसे बढ़ चढ़ कर खजस्ता ने हिस्सा लिया। चूंकि एक अफगीर बार बार देगची से टकरा रहा था, मुझे मालूम हो गया कोई अनाड़ी बावर्ची अपनी फुर्ती की दाद लेना चाहता है। और उस घर में खजस्ता के अलावा और कौन अनाड़ी हो सकता था। मैंने अपनी साइकिल बरामदे से बाहर निकाली, उसे पुरानी जुराब से साफ किया और उसकी एक एक कुल और पुर्जे को हेयर ऑयल से मालामाल कर दिया। मुझे मालूम था कि मकबरा शहर से काफ़ी दूर है और वहां तक पहुंचते पहुंचते अच्छी खासी साइकिलें जवाब दे जाती हैं। जब बावर्ची ने साइकिल निकालकर बाहर गली में खड़ी कर दी तो मैंने टाई की गिरा पर ब्रश करते हुए कहा, मेरा इंतज़ार न करना, मैं आज खाना नहीं खाऊंगा। उसने एक लम्हे के लिए मुझे मानी खेज नज़रों से देखा और फिर बड़बड़ाता हुआ अंदर बावर्ची खाने में चला गया, जहां उसने मेरे हिस्से का आटा गूंद कर अभी चंगेरी से ढांपा ही था। पता नहीं कितनी देर तक मैं मकबरे की चार दीवारी में घास के प्लाट पर लेटा उनका इंतज़ार करता रहा। जुमे का दिन होने की वजह से कोई शख्स भी उधर सैर को ना आया। मैं चार दीवारी के मेहराबों को बार बार गिनकर चार से ज़र्ब देता और तीन पर तकसीम करता रहा। एक बजे के करीब सदर दरवाजे के सामने एक तांगा रुका और उसमें से तीन बुरका पोश औरतें उतरी, जिनमें उस एक का बुरका स्याह था और उसकी सैंडल की एड़ियां घिसी हुई थी। मैं अपनी जगह से उठा और खरामा खरामा मकबरे की इमारत को चल दिया। सुरूफ सहमे हुए मुझे अपने करीब से गुजरता हुआ देख रहे थे। बाग सुनसान था, रविशें दरख्तों के सूखे हुए पत्तों से अटी हुई थीं और फुहारे का पानी लेकर बहने वाली नहरें घास फूस मट्टी और खुश्क सब्ज टहनियों को अपने किनारों में दबाए आराम से लेटी थी। और मुझे ऐसा लगा जैसे जहांगीर की कब्र के इर्द गिर्द हर किस्म की और बहुत सी कब्रें हों, लंबी तिरछी आड़ी गोल गहरी। बूट उतारते हुए मैंने लड़के से पूछा, मजावर कहाँ है? तो उसने जोर से नाक साफ करके कहा, जुमा पढ़ने। इस मुख्तसर से जवाब के बाद मैं उससे और कुछ पूछने की जरूरत नहीं कर सका और चुपचाप मीनार की सीढ़ियां चढ़ने लगा। ऊपर पहुंचकर मैं दरियाए रावी को एक नजर देखने लगा और फिर सब्जी मायल मिटियाले दरख्तों के दरमियान उन तीनों का इंतजार करने लगा।

वो आहिस्ता आहिस्ता चल रही थी और ऊपर से मुझे ऐसे दिखाई देता था जैसे वो सदियों से रेंग रही हूं और फासला उनके सामने हौले हौले फैल रहा हो। वक्त गुजारने के लिए मैंने सिगरेट का सहारा ढूंढ लिया और जब सिगरेट बिल्कुल राख हो गई तो वो नजरों से मादूम हो गई। शायद वो उसी लड़के से बातों में मसरूफ हो गई थी। जब उसने बेनार की सबसे आखिरी सीढ़ी चढ़ी और उसके बाद आखिरी मर्तबा लंबी सारी उफ की तो मैं उठकर खड़ा हो गया और सीढ़ियों की नाकाबंदी करके कहने लगा, मालूम था तुम जरूर आओगी। उसने खौफ और हैरत भरी निगाहों से मुझे देखा और बोली, आप कौन हैं? बेहतर था तुम मुझसे ये सवाल ना पूछी, लेकिन अब जो पूछ लिया है तो सुनो, मैं वही छोटा सा तकिया हूं जिसे तुम बचपन में अपने सीने से लगाए फिरती थी और मैं उन्हीं रंग बिरंगी चीजों का अक्स हूं जिन्हें ओढ़कर तुम मिलानी जी के यहां पढ़ने जाया करती थी और मैं वही शरीर मामूजाद भाई हूं जिसके ताल्लुक और जिसके खिलाफ तुम्हारी क्लास फेलोज कैसी कैसी मजेदार बातें सुनाया करती थी। अब तुम्ही मुझसे पूछ रही हो मैं कौन हूं और कहां से आया हूं, मेरा नाम क्या है? याद नहीं, याद नहीं जब तुम बोर्डिंग में रहा करती थी और तुमने मुझे एक मर्तबा ख्वाब में देखा और तुम उसके बाद अपनी उस्तानी की गर्विदा हो गई। जब तुम सुबह सवेरे स्कूल के बाग से कलियों की झोली भरकर अपनी उस्तानी के इंतजार में साइंस रूम की सीढ़ियों पर बैठ जाया करती थी, उस वक्त तुम्हें उसी का इंतजार होता था जिसे तुमने ख्वाब में देखा था और आज जब वो ख्वाब सच्चा हो गया है तो तुम मुझसे पूछती हो मैं कौन हूं। उसने रूखी होकर कहा, मैं अपनी अम्मी को पुकारती हूं। मैंने कहा, तुम हर रोज छत पर आकर अपनी अम्मी को पुकारा करती हो मगर बुलाती किसी और को हो। हर रोज रात को तुम अपने नर्म और गुदास बिस्तर से उठकर मेरी तरफ आने का कसद करती हो मगर तुमने अपनी पसलियों के अंदर दिल का एक ऐसा तोता पाल रखा है जो तुम्हें भयानक बातें सुना सुनाकर डरा देता है। क्या उस वक्त तुम अपनी अम्मी को पुकार कर ये नहीं कह सकती हो कि इस तोते की गर्दन मरोड़ दें? लेकिन तुम अपनी अम्मी को पुकारती ही कब हो, तुम्हें आवाज देना नहीं आती। अब भी तुम अपनी अम्मी को आवाज देकर मुझे ये बताना चाहती हो कि वो एहतलाज कर्ब की मरीज हैं और कई घंटों में भी ये सीढ़ियां तय नहीं कर सकती। तुम इस तरह कब तक अपने आप को धोखा देती रहोगी? बारिश के दो मोटे कतरों जैसे बड़े बड़े आंसू उसकी अब रेशमी पलकों से थिरकने लगे और उसने कहा, धोखा धोखा, हां हां, मैंने जवाब दिया, हां। तुम खुद फरेबी के सुनहरे जाल खुद ही बुनती हो और उसमें खुद ही उलझ कर रह जाती हो। उस दिन जब तुम्हारा काढ़ा हुआ सफेद रुमाल हमारे छत पर आकर गिरा तो तुमने झल्ला कर कितने जोर से कहा था, ये क्या मुसीबत है? दरअसल तुम्हारा मतलब था ये कितनी बड़ी राहत है और तुम राहत को उजागर करने के लिए उसके इर्द गिर्द मुसीबतों के पिघलते हुए अंबार लगाती रही हो। तुम हर मुसर्रत की तरफ मनफियाना पेश कदमी करती रही हो और करती रहोगी। लेकिन उसने अपने बुरके के नकाब को उंगली के गिर्द लपेटते हुए कहा, मैंने कौन सी खुशी हासिल की? मुझे मालूम नहीं तुम क्या कह रहे हो, मेरे फरिश्तों को भी पता नहीं तुम कौन हो। मैंने कहा, तुम खुशियां इकट्ठी करने के लिए छोटी छोटी झोलदारियां नस्ब करती हो मगर उनकी तनाबे बहुत कमजोर होती हैं। हर सुबह जब सूरज की पहली किरण दरवाजे की झरी में दाखिल होकर तुम्हें बेदार करके कहती है, उठो मैं तुम्हारे लिए खुशियां लाई हूं, तो तुम हड़बड़ाकर अपने तकिए के नीचे हाथ फेरती हो और सरासीमा होकर पूछती हो, मेरी कल की खुशियां कहां गई? और इस तरह हर रोज तुम्हारी मुसर्रतों का बैंक दिवालिया हो जाता है। आसमान पर जब मेरी रूह ने तुम्हारी रूह से कहा, जमीन पर पहुंचकर हम एक दूसरे के हम आगोश होंगी, तो तुम्हारी रूह
रूह अकदस के परों की तरह फड़फड़ाए और तुम मुझे लंका की पहाड़ियों में ढूंढते रही। और आज जब इस मीनार पर एक दूसरे के सामने खड़े हैं तो तुम मुझे पहचानने से माजूरी जाहिर कर रही हो। जब तुम टाइफाइड में मुब्तला होकर अपनी जान से बेजार हो गई थी उस वक्त तुम्हारे मुंह में थर्मामीटर लगाकर बालों भरी कलाई पर घड़ी में वक्त कौन देखा करता था और कौन तुम्हारे टेम्परेचर का चार्ट भरता रहता था। आज तुम उस कलाई को उस घड़ी को तो पहचान रही हो मगर उस आदमी से नामानूस हो। उसने घबरा कर पूछा, तुम कलीम हो? लेकिन तुम कलीम कैसे हो सकते हो, तुम तो फिर उसने कहा, मेरा रास्ता छोड़ दो, मैं नीचे जाना चाहती हूं। मैंने जवाब दिया, इस जगह से कोई रास्ता नीचे को नहीं जाता। हम तो तहतो सरा में खड़े हैं, एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। यूं कहो, आओ आओ ऊपर चले। लेकिन मुझे मालूम है तुम ऊपर नहीं जा सकोगी, तुम नीचे भी नहीं जा सकोगी। तुमने ये बात इसलिए कही है कि तुम यहां खड़ी रहो और मेरे जहन में कभी यह ख्याल ना आने पाए कि तुम यहां से कहीं जा भी सकती हो। तुमने मुझे एक दफा बुलाया था और टाल दिया था, अब दूसरी मर्तबा बुलाया है और फिर झिझक रही हो। अगर तुम्हारी जगह मैं होता तो तुम्हें बुलाता ही नहीं। उसने रोते हुए कहा, मैंने तुम्हें कब बुलाया है? अगर मुझे मालूम होता कि तुम भी यहां हो तो मैं कभी भी ऊपर ना आती, बल्कि मैं इस मुकाम पर ही ना आती। मुझे क्या खबर थी कि तुम्हारे जैसे बदमाश। फिर वो सारो कतार रोने लगी। मैंने उसका कंधा थपक कर कहा, हम जिसे जालिम कहते हैं वो दरअसल हमारा अपना प्यारा होता है। हम जिसे मायूसी समझते हैं वो हमारी उभरती हुई आस की जमर्दगी कलगी होती है, और जिसे तुम बदमाश कहती हो वो तुम्हारा महबूब होता है। अगर तुम्हें किसी की महबूबा बनने की सआदत नसीब होती तो तुम यकीनन ऐसा ना कहती। लेकिन रोना तो यही है, तुम बचपन से लेकर अब तक मोहब्बत करती आई हो और बुढ़ापे में भी अपने आशिकाना जज्बात से गुरेज ना कर सकोगी। पता नहीं अब तुम मुझे पहचानते हुए भी ना पहचानने की कोशिश क्यों कर रही हो। तुमने बड़ी मुश्किल से रेलगाड़ी की छत से बल्ब चुराया है और अब उसे फिर उसी जगह लगा देने की सोच रही हो। इस तरह तुम दो चोरियां करोगी, एक रेलगाड़ी की और एक उस चोर की जिसने ये कमकमा चुराया है। उसने आंसू पोंछ कर कहा, मेरी फूफी भी साथ हैं और मैं उनके लड़के से मंसूब हो चुकी हूं। तुम क्यों? मैंने कहा, तुम उसी से मंसूब हो जिसका इंतजार तुमने साइंस रूम की सीढ़ियों पर किया था। तुम उसी से ब्याही जाओगी जिसके लिए तुम लंका की पहाड़ियों पर मारी मारी फिरी हो। तुम्हारे फूफीजाद भाई का वजूद महज एक हादसा है। मोटर पहले जमजमा के चबूतरे से टकराती है, हादसा बाद में उसे उल्टाकर उसकी मड़गाड़ और बत्तियां तोड़ देता है। उसने कहा, मुझे मालूम ना था दीवाना मकबरा जहांगीर के मीनार में छुपा हुआ है। तुम तो पागल हो। मैंने जवाब दिया, तुम वाकई पागल हो। लेकिन तुम मीनार में छुपी हुई नहीं हो बल्कि उस पर खड़ी होकर इर्द गिर्द की चीजों को रोशनी बख्श रही हो। तुम ही तो जहांगीर हो जिसने अपनी सल्तनत अपनी महबूबा को बेच दी। लेकिन तुम्हारी महबूबा को यह सौदा कितना महंगा पड़ा। उधर देखो, वहां तुम्हारी महबूबा उसी सौदे में घाटा खाकर इतनी मलूं और इस कदर परेशान है कि उसके तावीज की खाक तक इस तजारत की नजर हो चुकी है। अब तुम उसके नाम को भी खाक में मिलाने पर उतर आई हो और इतनी बुलंदी पर चढ़कर बोल रही हो। उसके आंसू खुश्क हो चुके थे और धोई धाई सफेद बर्फीली आंखें काफूर की टिक्कियां बन गई थी। उसने अपने लब खोले और हारमोनियम के पर्दों जैसे दांतों में अपनी सुर्ख सुर्ख जबान दबा ली। फिर अपने गोशाए चश्म से मुझे देखकर बोली, तुम हमारे पड़ोसी तो नहीं? मैंने कहा, हाँ। तुम मेरी पड़ोसी हो और मेरे मकान के गिर्द जो कोई भी रहता है वो मेरा पड़ोसी है। पर मैं तो उस तोते का हमसाया हूं जो हर रात तुम्हें मुझसे बदजन करने के लिए एक कहानी सुनाया करता है। उसकी हर कहानी मेरे घर को और उसके दरवाजों में
एक एक मेघ बनकर गड़ी हुई है और मेरे निकलने का रास्ता बंद हो गया है। तुम हर शाम वो मेघें उखाड़ने आती हो मगर एक नई खूंटी ठोक कर चली जाती हो, और मैं सुबह से शाम तक दीवारों को नाखूनों से खुरच खुरच कर नकब लगाने की कोशिश करता रहता हूं, लेकिन तुम जानती हो कि मेरे घर की दीवारें हाथी के खाल से बनी हुई हैं जो कुतुबी सितारा निकलते ही अपने जख्मों को रफू कर लेती हैं। उसने ठोड़ी के नीचे बुरके की डोरी खोलते हुए कहा, तुम बड़ी मज़ेदार बातें करते हो, ये तुमने कहाँ से सीखी हैं? मैंने कहा, तुम्हारा मतलब है मैं अपना सबक भूला नहीं हूँ? मैं बड़ा होनहार शागिर्द हूँ और अपने मुअल्लिम के सामने आमोख्ता बड़े हुस्न और सलीके से दोहरा सकता हूँ। इस पर वो मुस्कुराने लगी और उसके गालों में दो नन्हे गड़े पैदा हो गए। रंगे हुए नाखूनों वाला हाथ मेरे कंधे पर रखकर बोली, मुझे मालूम न था तुम भी इसी कदर बेकरार हो। मैंने सोचा दीवारें खुरचते खुरचते तुम्हारी उंगलियों में नासूर हो जाएंगी और तुम अजगर की तरह केंचली चढ़ाकर मीठी नींद सो जाओगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तुम धुन के पक्के निकले। आओ अब हम दोनों मिलकर इस तोते की गर्दन मरोड़ दें। मैंने कहा, उस तोते को ना मारना, उसमें मेरी जान है। अगर मेरी जान निकल गई तो तुम मर जाओगी। उसने कहा, मुझे अपनी जिंदगी की परवाह नहीं। मैंने जवाब दिया, मुझे भी अपनी जिंदगी की परवाह नहीं, लेकिन मुझे तोते की जिंदगी अजीज है। उसकी आंखों में आंसू भर आए और फिर कहने लगी, लेकिन मेरा फुफीजाद भाई इस तोते को मार डालेगा क्योंकि उसकी नाक बिल्ली जैसी है और उसकी आंखें शकरे की तरह तेज हैं। मैंने उसके सर को कंधे से लगाकर थपका और कहा, तुम फिक्र ना करो, वो उसे गजन नहीं पहुंचा सकता। ये बात अलग है कि वो भी जलन में आकर मीना पाल ले, लेकिन ऐसा कभी ना होगा। वो एक ताजर है और ताजर ऐसी चीजें नहीं पालते जिसमें खासा मुनाफा ना। उसकी आंखें खुशी से चमक उठी और उसने मेरी टाई पर नाक रगड़ते हुए कहा, एक मर्तबा जब कमरा इम्तिहान में सवाल हल कर रही थी तो तुम अचानक आकर मुझे गुदगुदाते हुए मुझसे बहुत सारी बातें करने लगे थे, और मैंने जलकर कहा था, तुमने तो वादा किया था यहां ना आऊंगा, लेकिन अब मेरा वक्त खराब करने को भी यहां आ पहुंचे हो। तुमने कसम खाकर जवाब दिया था, मैं नहीं आया हूं, तुम्हें वहम हो रहा है। उस पर मैंने तंग आकर कहा था, कितना झूठ बोलते हैं आप जहन्नम में जाएंगे। क्या तुम मेरा मतलब समझे थे? मैंने सर हिलाकर कहा, नहीं नहीं। उसने अपना माथा मेरी छाती पर हौले हौले मारते हुए कहा, आपसे मिलने की तमन्ना पहले एक चंगारी बनकर सुलगती रही, उसके बाद फौरन भड़क उठी और आग के नारंगी शोलों ने मुझे दिन रात जलाना शुरू कर दिया। मैं आपको उसी जहन्नम में भेजना चाहती थी। मैंने कहा, तुम्हारी बातें तो पहेलियां हैं और मैं सिर्फ सीधी बातें समझ सकता हूं, तुम्हारे इस मामला को क्यों कर हल करता? फिर हम दोनों एक पत्थर पर बैठ गए। मैंने उसकी गोद में सर रख दिया जिसमें वो अपनी उंगलियों से कंघी करती रही और आहिस्ता आहिस्ता कुछ गुनगुनाती रही। थोड़ी ही देर बाद हमें सीढ़ियों से कदमों की चाप और फूले हुए सांसों की बातें करने वाली आवाजें आने लगी। मैंने उसकी गोद से सर उठाया और अकड़ू होकर बैठ गया। घबराई हुई निगाहों में से मैंने उसको देखा, लेकिन उसकी आंखों में सुकून और लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट थी। उसने अपना बायां हाथ उठाकर कहा, यह हीरे की अंगूठी है, यह मेरी जिंदगी खत्म करने के लिए काफी होगी। इस तरह अपनी अम्मी और अपनी फुफ्फी की तान अमेज बातें सुनने से बच जाऊंगी, ये कहकर उसने अपना उल्टा हाथ लबों की तरफ बढ़ाया, लेकिन मैंने उसकी कलाई मजबूती से पकड़ ली। उसने जोर लगाया और इस जोर आजमाई में हम उठ खड़े हुए। अपनी सारी कुव्वत मैंने अपनी सारी कुव्वत से उसे फर्श पर गिरा दिया और एक असमत माब लड़की इफ्फत और इज्जत बरकरार रखने के लिए मैं मीनार की बुलंदी से नीचे कूद गया।
चिनार की बुलंदी से नीचे कूद गया।

FM 101, The Sound of New Millennium. सुर और संगीत, साजो आवाज, आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।

लाहौर और इसके गिर्द नवा में सुने जाने वाली आवाज का नाम रहमान अनवर है और 1:45 वक्त जो है वो बहुत कम रह गया हमारे पास और हो सकता है मैं कुछ ही देर में प्रोग्राम जो है वो इख्तिताम करूं। बहरहाल अभी मैं आपके मैसेजेस पढ़ने के लिए 4471 के पैगाम ओपन करने वाला हूं। अगर आपने अभी तक मैसेज नहीं भेजा तो मुझे मैसेज भेजिएगा। मोबाइल के राइट ऑप्शन में जाकर लिखिए 101 स्पेस देकर अपना नाम अपना पैगाम और उसे भेज दीजिएगा 4471 4471। वहाँ के आपके पैगाम मैं शामिल कर रहा हूँ।

और इसके साथ साथ सोशल नेटवर्क फेसबुक के ऊपर हमारा ऑफिशियल फैन पेज facebook.com/fm101lahore। अब जानते हैं लाइव कॉल्स मैं प्रोग्राम का हिस्सा नहीं बना रहा इन दिनों। जब दोबारा से लाइव कॉल्स का सिलसिला शुरू करेंगे तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। अभी जब भी मैं कभी ऑफर होता हूं, कोई ट्रैक चल रहा होता है, तो आप मुझे ऑफर कॉल कर सकते हैं। उसके लिए नंबर जो है वो आपको मालूम होना चाहिए। लाहौर के बाहर से या अपने मोबाइल फोन से कॉल करने की सूरत में लाहौर का इजाफी कोड आपको मिलाना होगा 042, उसके बाद 1110101 हमारे और आपके दरमियान रबते का नंबर। facebook.com/fm101lahore का ऑफिशियल फैन पेज, वहां पे भी आपके पैगामात मैं पढ़ने के लिए फौरन से जाऊंगा। बस इस चंक के अंदर हम प्रोग्राम का इख्तिताम करेंगे। सबसे पहले 441 के पैगामात जो हैं वो आपकी समातों की नजर कर रहा हूँ।

वसीम अवान सियालकोट से हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत सारी दुआएं और नेक तमन्नाएं, सदा खुश रहें, सलामत रहें, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। मरीना बिलाल हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम रहमान, वेलकम मरीना फ्रॉम लाहौर, बहुत शुक्रिया। मलिक वसीम अवान कहते हैं, मेरी तरफ से आपको और आपकी पूरी टीम को, सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आशिकी हमारे साथ हैं, अस्सलाम वालेकुम आरजे, वेलकम टू प्रोग्राम, सुन रहा हूँ। नाहिद अख्तर की आवाज़ में प्ले कर दें कोई ट्रैक, शुक्रिया और सबको खास सलाम। शहर नवाब शाह से, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। पाकिस्तान जिंदाबाद, शहर सियालकोट जिंदाबाद, मलिक वसीम अमान लिख रहे हैं, बहुत उम्दा, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। इस्लाम गुजर हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत प्यारा भाई है, कहते हैं आ गया था वो खुश खसाल पसंद, थी हमारी भी क्या थी हम। सियालकोट जिंदाबाद, मलिक वसीम अमान लिख रहे हैं, बहुत उम्दा, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। इस्लाम गुजर हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत प्यारा भाई है, कहते हैं आ गया था वो खुश खसाल पसंद।

पसंद उन्हें, लेकिन इस तरजा पाए माल पसंद। सच न कहिए कि सच है सब्र तलब, लोग होते हैं इश्तेआल पसंद। हाँ मुझे आज भी पसंद है वो, उसको कहते हैं लाजवाल पसंद, इसको कहते हैं लाजवाल पसंद। हलम में अहले इल्म का शेवा, जाह वालों को है जलाल पसंद। वसल को हिजर नागहानी मौत, हिजर को मौसम विसाल पसंद। फिक्र दुनिया नहीं मुझे अहमद, अपनी मस्ती और अपनी खाल पसंद। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। खूबसूरत लहजे से पढ़ दें, सलामत रहें। बहुत शुक्रिया, मैंने पढ़ दिया। ताहिरा मसूद साहिबा हमारे साथ हैं, तसव्वुर अली बहुत बहुत शुक्रिया, महजबीन थैंक यू वेरी मच, साइम बट बहुत बहुत शुक्रिया, लहनूद अल इशराफ हमारे साथ मौजूद, थैंक यू वेरी मच। मोहम्मद सुलेमान हमारे साथ हैं, अताउल्ला मुझे सुन रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। फरहान मिनहाज यूनिवर्सिटी से लाहौर से मुझे सुन रहे हैं, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। मेरा बहुत प्यारा भाई है मलिक जुनेद, DHQ हॉस्पिटल फैसलाबाद से मुझे सुन रहा है, बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर नदीम सरवर मुझे फैसलाबाद से सुन रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। 101 की प्रोड्यूसर वह करती हैं नगमाना आदिल बुखारी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फहद तुम्हारा भी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। बाजी मैमूना मुझे सुन रही हैं मंडी बहावुद्दीन से, बहुत बहुत शुक्रिया। बाजी महविश मुझे सुन रही हैं गुजरांवाला से, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। निमरा मसूद साहिबा 101 की बहुत खूबसूरत आवाज़ हैं, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। मोहसिन अली बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अजीम जट बहुत बहुत शुक्रिया। बेटा शहराम थैंक यू वेरी मच, तुम्हारा शुक्रिया बेटा, सलामत रहो। राना शहराम फैसलाबाद से, बहुत प्यारा सा छोटा सा मेरा भाई है, सलामत रहो हमेशा खुश रहो। जिले शाह थैंक यू वेरी मच। 101 की प्रोड्यूसर हुआ करती हैं, सीनियर प्रोड्यूसर और कमाल लबो लहजा है, उर्दू अदब को बहुत अच्छे से समझती हैं और प्रोड्यूसर भी हैं। खदीजा मुराद साहब थैंक यू वेरी मच, सलामत रहें। हमजा मुझे शेखुबरा से सुन रहा है, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। खौला अरशद साहिबा बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आमिर लियाकत थैंक यू वेरी मच। मिस किंजा थैंक यू वेरी मच। हमारे साथ रजा मुल्तान से थैंक यू वेरी मच। इकरा बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। परवीन आसिफ साहिबा मुझे कराची से सुन रही हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। जुनेद लाहौर से बहुत बहुत शुक्रिया। मान भाई थैंक यू वेरी मच, सलामत रहें। सल्फिया थैंक यू वेरी मच। नोखेज बहुत बहुत शुक्रिया। अली हुसनैन कोट अद्दू से मुझे सुन रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। शाद इस्लामाबाद से बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आतिफ लाहौर से थैंक यू वेरी मच। मियाँ जाहिद बहुत बहुत शुक्रिया, हाल रोड से मुझे सुन रहे हैं। अर्जर हम बट 101 की बहुत खूबसूरत आवाज़ है, थैंक यू वेरी मच मेरे भाई, सलामत रहें। फेसबुक के पैगाम शामिल कर रहा हूँ और उससे पहले डॉक्टर राबिया का मैसेज आ चुका, आपने मेरा कोई मैसेज नहीं पढ़ा। राबिया बहुत लंबे मैसेजेस हैं, फिर किसी प्रोग्राम में पढ़ूंगा, थैंक यू वेरी मच। आपने नज़म की फरमाइश की है, टाइम जो है वो बिल्कुल कम रह गया, नज़म हो सकता है ना पढ़ पाऊँ, बस जल्दी से मैं मैसेज पढ़ रहा हूँ। facebook.com/fm101 लाहौर के मरीना बिलाल हमारे साथ मौजूद हैं, अस्सलाम वालेकुम अर्ज रहमान, वेलकम मरीना फ्रॉम लाहौर, थैंक यू वेरी मच। चीकू मुगल हमारे साथ मौजूद, अस्सलाम वालेकुम कह रहे हैं, चीकू मैंने तुम्हें पहचान लिया, थैंक यू वेरी मच, सलामत रहो खुश रहो। सजाद अली लाडला हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू, वेलकम टू द शो, सत बिस्मिल्लाह जी आनू वेलकम, उम्मीद करता हूँ आप ठीक ठाक होंगे, सुन के अच्छा लगा, सलामत रहें आप, आमीन, थैंक यू वेरी मच। साजिद अली ने एक गुलाब का फूल भेजा है मुझे, बहुत शुक्रिया साजिद, खुश रहो। आजकल तुम्हारी मसरूफियत मुझे महसूस हो रही है, यहाँ पे तुम आ रहे हो। चीकू मुगल हमारे साथ मौजूद, कहते रहमान भाई क्या हाल है, बिल्कुल ठीक ठाक। जुगनू जूनियर, वो तबीयत का मेरी था भी नहीं और फिर मैं तो खुद अपना भी नहीं, बस मियाँ दस्त हूँ बैठा हुआ, ऐसा खुद सर हूँ कि सौदा भी नहीं।

उस तरह दौलत पे दिल ने दी सदा, और फिर कमबख्त टेढ़ा भी नहीं, और फिर कमबख्त ठहरा भी नहीं। आदमी को है जमाने से गिला, ये जमाना तो खुदा का भी नहीं। एक अजब मुश्किल में है वो नाजनी, यानी मैं उसको भुलाता भी नहीं। ऐ निहाले आरजू, ऐ निहाले आरजू बेबरगोबार, शाख पर कोई परिंदा भी नहीं। दिल मोहल्ले का अजब अहवाल है, घर भी हैं और कोई रहता भी नहीं। शौक ठीक है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, तुमने ये गज़ल भेजी है मुझे। गुलाब हमारे साथ हैं, अस्सलाम वालेकुम रहमान अनवर, हाउ आर यू? बिल्कुल ठीक ठाक, वालेकुम अस्सलाम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो, सत बिस्मिल्लाह जी आई नो, अस्सलाम वालेकुम रहमान भाई, उम्मीद करता हूँ आप ठीक ठाक होंगे, प्रोग्राम सुन के बहुत अच्छा लग रहा। आर के मुगल हमारे साथ, माशाल्लाह बहुत आला शो, थैंक यू वेरी मच। चीकू मुगल कह रहे हैं नाइस शो, बहुत बहुत शुक्रिया। इस टाइम तो ब्रेक हो जाती है, फिर आप अफसाना पढ़ने लगते हैं। रहमान आज आप बहुत लेट हो गए हैं, प्रोग्राम जल्दी स्टार्ट किया करें, आज आप 3 बजे तक प्रोग्राम करना है, मुश्किल है, अभी बस इजाज़त लेने वाला हूँ। वेरी नाइस शो। सजाद अली लाडला कह रहे हैं तमाम सुनती समातों को मेरी तरफ से सलाम अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू, पाकिस्तान पंजाब एंड पाक आर्मी को सलाम। रहमान अफसाना गो के पुराना ही है, मगर फिर भी बहुत अच्छा, फिर भी आपने अच्छा पढ़ा है, शाबाश, अच्छा शाबाशी मिल गई है जी।

ऑलराइट जी, वंस अगेन थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। जितने भी लोगों ने प्रोग्राम में शमूलियत इख्तियार की, प्रोग्राम को सुना, मोहब्बतें निछावर की, आप सबका बेहद बेहद शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वेंसडे मिडनाइट टिल 2 AM और उसके साथ साथ जुमेरात की रात 12 से लेकर 2 बजे तक लोकल लाहौर के प्रोग्राम में।

ठीक है मरीना बिलाल, ये रिक्वेस्ट मैंने नोट कर ली। आखिर में राबिया तुम नाराज बहुत हो रही हो, तो मैं ये डॉक्टर राबिया आपके लिए पढ़ रहा हूं ये नज्म। रात तारीख बहुत दिल से मगर फिर भी कम, ना कोई चांद ना तारा दिल में, ना कोई दीप सहारा दिल में। यस ठीक है, ये यहां से प्ले हो जाएगा। रात तारीख बहुत दिल से मगर फिर भी कम, ना कोई चांद न तारा दिल में, ना कोई दीप सहारा दिल में। दिल के टुकड़े उड़े चेहरों पर और रूहों पर असर जा उतरा, साए भी छोड़ गए साथ भरे शहरों में। शहर वीरान बहुत दिल से मगर फिर भी कम, ना कोई चौक ना बाजार यहाँ, ना कोई रंज ना आजार यहाँ। धूप के खौल में आ कैद हुए हम कफस दयारे यहाँ। ऐसा रिश्ता के दिखाई भी ना दे, ऐसा मोहम ताल्लुक के सुझाई भी ना दे। तार बारीक बहुत दिल से फिर भी कम, रात तारीक बहुत। मैं जमीन से एक दिन आसमां को आऊंगा, तुम पहले आसमां पे मेरा इंतजार करना। अल्लाह।

ZEESHANNASIR26 ईशान नासिर 26, यहाँ पे आप जाइए, मुझे मैसेज कीजिए इंस्टाग्राम पे, आपके मैसेज शामिल कर रहा हूँ, फिर आपसे खुदा हाफिज करता हूँ। फरवर वाब हमारे साथ हैं, किरण खान हमारे साथ हैं, एवरग्रीन हमारे साथ हैं, शहजादी हमें मैसेज कर रही हैं, और शहजादी के साथ साथ हुरिया मलिक हमारे साथ हैं, राबिया बतूल हैं, रोहान मलिक हैं, राबिया क्वीन हैं, हमजा हली हैं, तुआ मलिक हैं, जैक किंग हमारे साथ हैं, शाजीना हमारे साथ हैं, अहमद जफर हमारे साथ हैं, अनम परवेज हैं, कवल सज्जाद हैं, कवल फातिमा हमारे साथ हैं, हिरा हुसैन हमारे साथ हैं, हमजा अली हमें मैसेज कर रहे हैं, मौसम जिशानियन हमारे साथ हैं, आय नूर हमारे साथ हैं, वकार गोंदर हमारे साथ हैं, पाकीज़ा इशफाक हमारे साथ हैं, सुल्तान हमारे साथ हैं, सिमरन मलिक हैं, एमन हमारे साथ हैं, इकरा अब्बासी हमारे साथ मौजूद हैं, और हाजरा जाहिद हैं, सुंदस हमारे साथ हैं, सारा हमारे साथ है, कह रहे हैं कमाल शो, हाँ आपको तो अच्छा ही लगेगा आज, यमुना हमारे साथ मौजूद हैं।

0: उस रोज किसी शख्स पर कुछ भी जुल्म नहीं किया जाएगा और तुमको बदला वैसा ही मिलेगा जैसे तुम काम करते थे।
1: इन्ना अस्हाबल जन्नत अल्यौम फी शुगुल फाकिहून,
0: अहले जन्नत उस रोज ऐशो निशात के मशगले में होंगे।
1: हुम व अज़वाजुहुम फी ज़िलालिन अलल अराइक मुत्तकिऊन,
0: वो भी और उनकी बीवियां भी सायों में तख्तों पर तकिये लगाए बैठे होंगे।
1: लहुम फीहा फाकिहतुन व लहुम मा यद्दऊन,
0: वहां उनके लिए मेवे और जो चाहेंगे मौजूद होगा।
1: सलामुन कौलन मिन रब्बिर रहीम,
0: परवरदिगार मेहरबान की तरफ से सलाम कहा जाएगा।
1: वम्ताज़ुल यौम अय्युहल मुजरिमून,
0: और गुनाहगारों तुम आज अलग हो जाओ।
1: अलम